सुप्रभात। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026 ईस्वी। आज का दिन हम सबों के लिए मंगलमय हो। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 5:58 और 45 सेकंड हो रहे हैं। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण।

0: आप आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घड़ी में इस वक्त सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुशल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।

0: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.1 MHz पर सुबह के 6:05 और 8 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन, शीर्षक है गुरु का महत्व।
3: गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। अंधकार है मन का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार और हृदय का भी अंधकार। सच्चाई जब नहीं दिखाई पड़ती है, विशाल हृदय जब स्वार्थवश संकुचित होकर आत्मा को कैद करता रहता है, तब हम अंधकार में जीते हैं। तभी हम मानव यानी जीवों की सर्वश्रेष्ठ रचना के पद से गिर जाते हैं। इसीलिए तलाश होती है प्रकाश की, रोशनी की। हमारे ऋषियों ने उज्ज्वलता के लिए प्रार्थना की है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ये ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? हाँ, यही है गुरु। गुरु शिक्षा से हमारे जीवन दीप को प्रज्वलित करता है और हम जगमग कर देते हैं जग को। गुरु का एक अर्थ होता है भारी। जो भारी है वही झुककर कुछ दे सकता है। भारी बादल जल की अपार राशि से झुका रहता है और जगत पर सृष्टि वर्षा की बूंदों से नृत्य कर उठती है। गुरु यानी शिक्षक को भी अपने ज्ञान से भारी होना होता है, तभी वो उड़ेल सकता है ज्ञान रोशनी की शुभ्र धारा को। हल्का बादल गर्जन तर्जन करता हुआ व्यर्थ उड़ जाता है। वैसे ही बिना ज्ञान के गुरु गुरु हो ही नहीं पाते। हम वस्तुतः होते क्या हैं, कैसे हैं, क्या होना है हमें, ये हम गुरु के ज्ञान रूपी दर्पण और निर्देशन में ही देख पाते हैं, समझ पाते हैं। गुरु ही हमें जड़ चेतन, शुद्धता विशालता, अंधकार प्रकाश, क्षणभंगुरता अनश्वरता के दर्शन कराता है। हमारे विवेक को जागृत करता है और हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, हम समझने लायक होते हैं। बड़ी उहापोह में था अक्खड़ साधु कबीर। उसकी कल्पना उसी को डगमगा रही थी। क्या करे कबीर जब गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। पर तभी कबीर के गुरु द्वारा प्रकाशित हृदय में उत्तर कौंध गया। अरे कबीर अल्हड़, तू भगवान को क्या जानने लगा? भगवान की महत्ता शक्ति

0: भगवान का अस्तित्व, किसी चीज का पता तुझे कहां था पगले? गुरु ने ही तो तुम्हें भगवान के बारे में बताया। और तब कबीर की वाणी निस्रित हुई, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु तो ईश्वर से पहले पूजे जाने का अधिकार रखते हैं। गुरु के लिए भी जरूरत बहुत से चीजों की है। महात्मा गांधी ने सच ही कहा था, लंका में बैठा सावधान शिक्षक अपने आचरण से शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। सही शिक्षकों को सावधान होना होगा, ज्ञान प्राप्ति को देने की उदात्त भावना को जगाए रखना होगा। सबसे बड़ा महत्व है गुरु के जीवन और आचरण का। गुरु को अपना आचरण शिक्षा के अनुरूप ढालना होगा, तभी शिक्षा की सार्थकता होगी।
1: गुरु का महत्व शीर्षक से आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो घड़ी में इस वक्त सुबह के 6:09 और 20 सेकंड हो रहे हैं। आइए शामिल होते हैं ईश्वर भक्ति में। कार्यक्रम है वंदना।

प्रेम यानी मोहब्बत जब ईश्वर से हो, अल्लाह से हो, तो बंदगी बन जाती है, और यही मोहब्बत जब उस्ताद से हो, अपने शिक्षक और गुरु से हो, तो रोशनी बन जाती है, और यही मोहब्बत और प्रेम जब दौलत से हो तो ये मर्ज बन जाती है। फैसला अब मनुष्य को खुद करना है कि हमें प्रेम किससे करनी है और कितनी हद तक करनी है।

प्यारे श्रोताओं, इल्म शिक्षा और ज्ञान वो नहीं है जो आपने सीखा है। इल्म शिक्षा और ज्ञान तो वो है जो आपके और हमारे अमल व किरदार से जाहिर होता है।

0: वंदना। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो में इस वक्त सुबह के ठीक 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कान की आज की कड़ी, एपिसोड 398।
1: एपिसोड नंबर 398। 398।

लोमश ऋषि के श्राप से ब्राह्मण शरीर धारी काकभुशुंडी को कौवे का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ऋषिवर ने उन्हें राम मंत्र भी दिया। श्री राम का ध्यान करने की विधि बताकर उन्होंने श्री रामचरित सुनाया, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान शिव से सुना था। अत्यंत प्रेम से इनके सिर पर हाथ रखकर ये वर दिया, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होगी और अपनी इच्छा के अनुसार वे जो भी रूप धारण करना चाहेंगे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वरदान उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अपना शरीर त्याग करने की इच्छा करने पर ही मृत्यु उनका वरण करेगी, अन्यथा नहीं। उन्हें कोई भी दोष कोई अवगुण व्याप्त नहीं होगा और अपनी इच्छा मात्र से ही जिस उपलब्धि की कामना करेंगे वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर काकभुशुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं यही कौवे का शरीर धारण कर 27 कल्पों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मुझे कौवे का शरीर इसलिए सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मैंने श्री राम की अविचल और अखंड भक्ति

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 6:50 और 43 सेकंड हो चुके हैं। आइए डालते हैं एक नजर आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के ऊपर। अब से थोड़ी देरी में यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। स्वास्थ्य वार्ता का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। इसके तहत आप सुनेंगे भेंट वार्ता थैलेसीमिया कारण लक्षण और बचाओ। गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत होगा 7:30 पर। समाचार प्रभात आप सुनेंगे 8 बजे। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुबह 8:30 पर। मॉर्निंग मेलोडी फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम होगा सुबह 8:45 पर। 9 बजे हम आपको ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे हम आपको अपना ही चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। अपराह्न 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। अपराह्न 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और दोपहर 3 बजे हम आपको ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

शाम 5 में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से और 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 5:32 पर होगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से और 6:02 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवा वाणी। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से और 7:10 पर जिले में आजकल, जिसे हम प्रसारित करेंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र से शाम 7:15 पर। आप सुनेंगे

विक्रम जनकार। सदाभर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम 7:30 पर। रात 8 बजे आप सुनेंगे फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण आप सुनेंगे रात 8:10 पर हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। समाचार संध्या रात 8:45 पर आप सुनेंगे। रात 9 बजे आप सुनेंगे News@10 हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर हम आपको ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। 10:30 पर होगा आज के फनकार। रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रोज की तरह रात 11:10 पर सभा का समापन होगा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 6:55 होने को है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिझा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात एटीएफ मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजनापि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनं नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणां अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य 5 दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने ही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2 दिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्रीशाहः पुष्पवन्त पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40 जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमितशाहः तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोक संतप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। संस्कृत में समाचार आप सुन लेते हैं हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आइए इसके तहत हम आज आपको सुनवाते हैं शिवनंदन पांडे गरीब के गायब कुछ खोटा लोकगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: लोक रंग। अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घर में इस वक्त सुबह के 7:20 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता के तहत भेंट वार्ता, थैलेसीमिया कारण लक्षण और बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव, उनसे बातें की हैं संजय कुमार केसरी ने। आइए सुनते हैं उनकी ये बातचीत।
1: आज के इस खास कार्यक्रम में हम समाज की एक बहुत ही गंभीर बीमारी थैलेसीमिया पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिसके बारे में अभी भी समाज के बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। इस गंभीर बीमारी को लेकर अभी भी हमारे बीच जागरूकता का अभाव है। समाज में थैलेसीमिया के प्रति लोग जागरूक हो, इस गंभीर बीमारी के कारण लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सके, इसके लिए आज के इस खास कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है हजारीबाग की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव को। तो मैडम, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: मैडम, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये थैलेसीमिया होता क्या है।
2: थैलेसीमिया एक खून की जन्मजात बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है, जो हीमोग्लोबिन बनता है, वो इफेक्टिव यानी सही तरीके से नहीं बनता है। कुछ तरह के प्रोटीन और जीन्स में बदलाव आने के कारण कुछ तरह की प्रोटीन कम बनते हैं, जिससे प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनने के कारण हमारा हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है या ब्लड सेल का नाश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ब्लड सेल, जिससे खून की कमी होती है। तो थैलेसीमिया इसी बीमारी को बोलते हैं जिसमें हमारी खून की कमी जन्मजात कारणों के कारण, जिसमें हीमोग्लोबिन सही ना बने, उस कारण होती है।
1: कह सकते हैं कि जो थैलेसीमिया है वो एक अनुवांशिक बीमारी है, माता पिता से उनके बच्चों में ये बीमारी का संचरण हो सकता है।
2: जी, थैलेसीमिया तीन प्रकार के होते हैं एक्चुअली, जिसमें माइनर एक होता है, इंटरमीडिया और मेजर होता है। तो माइनर हमारे बीच में काफी सारे, हम सब में हम लोग चेक करेंगे तो काफी सारे लोग माइनर होते हैं, और जब दो माइनर कपल हस्बैंड वाइफ माइनर हो तब बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का चांस होता है। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है।
1: और अगर तीसरे तरह के थैलेसीमिया की बात करें तो वो किस तरह का होता है?
2: जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया और थैलेसीमिया मेजर होते हैं ये सीरियस बीमारी होती है। माइनर वालों को तो कभी जांच के बिना पता भी नहीं चलता है कि वो कैरियर है या माइनर थैलेसीमिया है, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन 10 से 12 ग्राम के बीच हमेशा रहता है और कभी कभी 14-15 तक भी देखा गया है। पर जो इंटरमीडिएट और मेजर प्रकार के होते हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, यानी उन्हें कई बार अपने जीवन काल में खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे जो सीवियर होता है वो थैलेसीमिया मेजर होता है, जो कि आपके जन्म से 5 महीने के बाद ही, जिसमें खून की कमी शुरू हो जाती है और 5 महीने की उम्र से ही उसे लगातार हर 15 से 20 दिन 25 दिन में खून की आवश्यकता पड़ती है अपना हीमोग्लोबिन को 7 ग्राम के ऊपर रखने के लिए।
1: थैलेसीमिया से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके शरीर में किस तरह के लक्षण दिखलाई देते हैं?
2: थैलेसीमिया माइनर वाले, जैसे हमने बोला, कई बार उन्हें पता नहीं चलेगा, हल्के खून की कमी रहेगी, जिसको आयरन गोली खाने के बावजूद मरीज बोलेगा कि 10-11 ग्राम का खून रहता है, हम आयरन हमेशा खाते हैं तब भी। तो ये भी एक थैलेसीमिया माइनर का लक्षण है। पर जैसे बताया हमने, मेजर जो होता है उसमें इतनी खून की कमी होती है कि वो ब्लड चढ़ाए बिना नहीं पूर्ति होती है, उसमें कुछ भी नहीं और काम करता है। तो जनरली मेजर वाले मरीज 5-6 महीने की उम्र पे ही सीवियर एनीमिया, पीलिया हो जाना, इससे प्रेजेंट करते हैं। उनके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं, चेहरे की बनावट में बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि शरीर कोशिश करता है कि जो और ज्यादा रेड ब्लड सेल बनाने का और ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाने का। तो उसके कारण शरीर में माथा चौड़ा होना, नाक की बनावट में बदलाव आना, बचपन से ही ये सारे चेंजेस दिखने शुरू होते हैं। और मेन होता है कि खून की कमी होती है, 4 ग्राम 3 ग्राम बार बार हो जाएगा खून, तो बार बार

0: ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है इन बच्चों को। पीलिया भी लगातार इनमें बना रहता है, धीरे धीरे बड़े होने के साथ लीवर बड़ा हो जाता है, स्प्लीन बड़ा हो जाता है इन बच्चों का, तो इस तरह से ये और ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो इसके इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जो इंटरमीडिया वाले होते हैं वो कई बार 5 या 6 साल या 10 साल की उम्र से उन्हें ब्लड की जरूरत पड़ती है, और बचपन में तुरंत नहीं पड़ती है। कई बार लड़कियों में मासिक शुरू होने के बाद ब्लड की जरूरत पड़ने लगती है, तो इनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्यों खून की कमी हो रही है। तो एक्चुअली कभी भी खून की कमी अगर हो रही है और हमें कारण ना समझ में आए तो एक थैलेसीमिया के बारे में मन में सोच के रखना चाहिए और उसके लिए जाँच कराना चाहिए।
1: आपने काफी अच्छी बात बताई कि अगर शरीर में लगातार खून की कमी हो रही तो एक बार हमें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर ब्लड की जांच जो है जरूर करवानी चाहिए। उसमें जो होमोग्लोबिन है उसकी जांच अवश्य करानी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम कहीं थैलेसीमिया से पीड़ित तो नहीं है।
0: जी, थैलेसीमिया के लिए केवल हीमोग्लोबिन जांच से जानकारी नहीं मिलती है, HPLC ये जांच का नाम है। HPLC जांच जो हीमोग्लोबिन का होता है उससे पता चलता है। सिर्फ थैलेसीमिया ही नहीं, एक्चुअली हमारे भारतवर्ष में सिकल सेल एनीमिया उतना ही कॉमन है, जो भी एक खून की कमी होती है जिसमें और एक सिम्टम होता है कि जॉइंट पेन्स, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस कई बार लोग सोचते हैं उसको। तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ये दोनों ही काफी कॉमन है, और हर तरह का हीमोग्लोबिन की गड़बड़ी जो है वो HPLC नामक जांच से पता चलती है, जो कि एकदम भी महंगी जांच नहीं है। पहले हमारे झारखंड सरकार ने उसे केवल 100 रुपए में यहाँ हजारीबाग में भी शुरू किया था सदर अस्पताल में करवाना, पर फिर वो सक्सेस नहीं किया। पर अभी भी मैक्सिमम जगह केवल 400-500 रुपए में ये जांच हो जाती है, जो हमें बताती है कि जो तरह के हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, HBS, किस तरह का हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में है। तो HbA2 जो हीमोग्लोबिन है अगर वो बढ़ता है 4 से ज्यादा, तब हम लोग थैलेसीमिया के लिए हम शंका करते हैं कि उसमें है।
1: आगे मैडम हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि मेडिकल साइंस में थैलेसीमिया बीमारी के इलाज की क्या संभावना है।
0: इलाज अभी फिलहाल जिंदा रखने के लिए ब्लड चढ़ाया जाता है। बार बार ब्लड के चढ़ने के कारण आयरन ओवरलोड, शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फिर एक्सेस जो आयरन होता है वो लीवर को डैमेज करता है, दिल को डैमेज करता है, हार्ट में चेंजेस आते हैं। तो ये इमीडिएट बचाव के लिए होता है कि हाँ खून चढ़ाया, और आयरन चेलेशन थेरेपी जो आयरन को, एक्सेस आयरन को शरीर से निकालता है, वो थेरेपी चलाई जाती है। डेफिनेट जो ट्रीटमेंट है अभी आना शुरू हुआ है, जिसमें सबसे सक्सेस जो रहा है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं, जो सक्सेस करता है अगर अच्छा आपको मैच डोनर मिल जाए। जनरली वो अपने भाई बहन होते हैं या रिश्तेदार होते हैं जिनसे HLA टाइपिंग मैचिंग की जाती है, और फिर वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें ये सक्सेस देखा गया है काफी अच्छा। और आजकल कई देशों में जीन थेरेपी भी आ गई है, जिसमें मॉडिफाई करके जीन डाले जाते हैं कि सही हीमोग्लोबिन बन सके। तो ये दोनों ही थेरेपी हैं जो डेफिनेट ट्रीटमेंट हैं, जो आपका पूरा पूरा इलाज है। और फिर अगर डेफिनेट थेरेपी नहीं कराएं तो जितने दिन ब्लड चढ़ाएं, आयरन चेलेशन थेरेपी दें, जितने दिन आदमी जिंदा रहे उस पे।
1: थैलेसीमिया से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो हम उसका बचाव कैसे कर सकते हैं?
0: बचाव के लिए जैसे एक सेइंग है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव आपको पहले सोचना है। एक बार बीमारी हो गई तब तो फिर उसके इलाज में घुसना है, और इलाज में ये सिर्फ एक व्यक्ति का इलाज नहीं होता है। एक्चुअली थैलेसीमिया या कोई भी हीमोग्लोबिन की जो बीमारी है, ये एक पूरे परिवार को अपने उसमें ले लेती है, क्योंकि पूरे परिवार का हर समय ब्लड बैंक जाना, ब्लड अरेंज करना, ब्लड चढ़ाना, हर महीना अस्पताल जाना, इस उसमें जीना कि बच्चा 15 साल या 20 साल का होके फिर आगे नहीं रह पाएगा, तो ये एक पूरे परिवार को ही वो करता है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि ये, क्योंकि अब है हमारे पास इस चीज की साइंस, तो हमें अब बचाव पे देना चाहिए। इसमें जो हम बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, इंडिया में बहुत कम जगहों पे उपलब्ध है। तो हमेशा हमें बचाव पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है। बचाव के लिए हमें बस माँ बाप, यानी कि जब भी एक कपिल शादी ब्याह होती है या जब प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करता है, तो एक जैसे बताया HPLC जांच बहुत ही सस्ती जांच है, हस्बैंड वाइफ दोनों को करवानी चाहिए। दोनों में अगर कैरियर स्टेटस निकलता है कि हाँ हम दोनों कैरियर हैं उस चीज के लिए, तो उन्हें पहले डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, आइडियली प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले। पर ये हमारे समाज में बहुत होता नहीं है, जनरली प्रेगनेंसी के बाद ही आती हैं महिलाएं, तो उस समय जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉक्टर के साथ, तो उस समय ये जांच कर लेनी चाहिए, हमें पता चल जाए। हाँ, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कैरियर हैं, तो हम पेट के अंदर जो बच्चा, जो भ्रूण है, उसकी जांच करते हैं जानने के लिए कि उसमें मेजर थैलेसीमिया या मेजर कोई हीमोग्लोबिन की बीमारी तो नहीं गई है। अगर ये जांच हम 5 महीने के अंदर हमारे पास मरीज आ जाए, हम सब जांच कर लें, तो ये जांच करके हम लोग बता देते हैं कि हाँ आपके बच्चे में ये बीमारी गई है, उसे इसमें ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी।

0: बर्थ से ही स्टार्टिंग, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उस भ्रूण को, फिटस को 20-22 हफ्ता के पहले हटा सके, अबॉर्ट कर सके, जो कि लीगली भी अलाउड है कि हमारे पास अगर ऐसी बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चे के लिए तो परिवार उसे हटा सकता है। ये जितनी जल्दी हो, दूसरे महीने तीसरे महीने में तो और अच्छा होता है कि हम तीसरे महीने में ही पता कर लेते हैं। CVS नामक एक जाँच होती है जिसमें अंदर से हम सैंपल निकालते हैं पेट से, बच्चे का टेस्ट करते हैं जीन्स का और बता देते हैं कि हाँ इसमें ये बीमारी है या नहीं है। आइडियली ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के शुरुआत में करनी चाहिए, क्योंकि एक बार एडवांस प्रेगनेंसी हो जाती है 6-7 महीना तो जांच करके बताने के बावजूद हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड रह जाते हैं। हम 10 साल से यहाँ पे हजारीबाग में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं लोग जो कि दूर देहात गांव से आ रहे, जिनके 4 बच्चे 5 बच्चे में थैलेसीमिया, और जो ये कहते हैं कि उन्हें ये जानकारी ही नहीं थी कि हम इसे पता कर सकते हैं प्रेगनेंसी के पहले। मतलब ये जानकारी का अभाव था डॉक्टरों के बीच भी, मरीजों के बीच भी, लोगों के बीच भी, कि इन्हें पता ही नहीं था कि 4-5 बच्चे जिनमें से एक को वो ब्लड चढ़ा के जिंदा रखे और 5 बच्चों को उन्होंने जाने दिया कि भाई अब नहीं हम ब्लड चढ़ा सकते हैं इतना। तो इसीलिए जानकारी बहुत अवश्य है। अगर आपकी डॉक्टर नहीं बता रही है तो आप में जानकारी, आप जाके बोलिए नहीं हम प्रेग्नेंट हैं, हमें ये सारी जांचें करानी है कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 3 प्रदेश है जहाँ पे 11-12% पॉपुलेशन, यानी हर 10 में से एक आदमी थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है। तो जब तक हम अपनी जांच नहीं कराएंगे वो हमें नहीं पता चलेगा कि हम अपने बच्चे में कोई मेजर बीमारी को पास ऑन कर रहे हैं।
1: और अंत में मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति थैलेसीमिया से पीड़ित हैं उनकी हम मदद कैसे कर सकते हैं?
0: जी बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्चुअली ब्लड डोनेशन करना हमारे स्तर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक नागरिक के तौर पे, कि हम रेगुलर इंटरवल पे अगर स्वस्थ हैं तो हर 3-6 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप्स में जाके या ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेशन रेगुलर करें, क्योंकि इन व्यक्तियों को जो थैलेसीमिया पीड़ित है ये केवल ब्लड के ही बेसिस पे जिंदा रहते हैं और इन्हें हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में प्रति वर्ष 15,000 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे पैदा होते हैं और इन 15,000 बच्चों को सोच लीजिए हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है, किसी को 15 दिन पे भी, तो इतनी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने स्तर पे हम उसके बारे में ज्ञान बढ़ा सकते हैं, उसकी जानकारी लोगों में बढ़ा सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन कर सकते हैं।
1: और अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को थैलेसीमिया के बचाव से संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी बीमारी जब हम टीवी या इस पे देखते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इससे बचे हुए हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किन जेनेटिक बीमारियों के हम कैरियर हैं, क्योंकि अधिकतर कैरियर स्टेटस वाली बीमारी हमारे सामने नहीं दिखती हैं जब तक वो मेजर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट करे, जनरली जब हस्बैंड वाइफ कैरियर हो। तो इसलिए एक तो हमें ये नहीं रखना चाहिए अपने मन में कि नहीं ये मेरे परिवार में पहले कभी नहीं हुआ है, ये आगे नहीं हो सकता है, मेरे परिवार में कोई जेनेटिक बीमारी नहीं। तो इसकी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि जेनेटिक बीमारियां अक्सर पहले स्तर नई पीढ़ी में ही प्रेजेंट करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पहले से परिवार में पीढ़ी में आ रही है तभी वो, उस तरह की भी बीमारियां होती हैं पर मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं वो फर्स्ट जनरेशन में ही प्रेजेंट करती हैं जब हस्बैंड वाइफ उसके कैरियर होते हैं। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी, थैलेसीमिया बहुत कॉमन है, अनकॉमन बीमारी नहीं है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो नवविवाहित कपल्स हैं उन लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमें जब प्रेगनेंसी प्लान करना है या प्रेग्नेंट हुए हैं तो जरूर शुरुआत में ही डॉक्टर के पास जाएं। अक्सर लोगों का होता है कि नहीं 4 महीना बीतेगा तब चलेंगे, अरे 3-4 महीना में नहीं मिलना, ये एक गलत है। आइडियली आपको प्रेगनेंसी के पहले डॉक्टर से मिलके सारी जांच करा के फॉलिक एसिड की दवा शुरू करके तब प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, तब आप मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस या गड़बड़ियों को अवॉइड कर सकते हैं। और एक ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों से जो स्वस्थ हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के आए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें कि हाँ ब्लड डोनेशन रेगुलर करें, जिससे इन बच्चों को, इस तरह के परिवारों को मदद मिल सके।
1: मैडम आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ी और थैलेसीमिया से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतने महत्वपूर्ण संदेश हमारे श्रोताओं के बीच आपने साझा किया, इसके लिए एक बार फिर से हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: थैलेसीमिया कारण, लक्षण और बचाव विषय पर आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता कार थी डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव, से बातें की थी संजय कुमार केशरी ने। कार्यक्रम था स्वास्थ्य वार्ता। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 7:34 हो चुके हैं। पेश खदमत है अगर फिल्म एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। गीत संगीत कार्यक्रम का लीजिए पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की आवाज में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

फिर बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।

पंकज उदास का आपने सुना। आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत एफएम आजादी बॉक्स से। लीजिए प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम को।

0: सोनू निगम के गायवासी गीत के साथ अगर फिल्म के गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। फिर
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
4: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
6: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमिदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन

0: ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
6: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है। जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ता ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।

0: News. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन तेज करने का दिया निर्देश। पारंपरिक शिल्पकारों के प्रशिक्षण को बढ़ाने पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, रक्षा उत्पादन में एमएसएमई की बढ़ेगी भागीदारी। झारखंड के उद्यमियों को मिलेगा रक्षा क्षेत्र में नया अवसर। जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने पर मंत्रियों की कमेटी में नहीं बनी सहमति, अंतिम फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 8 जून तक तेज हवा, वज्रपात और गर्जन की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और गोवा में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को हराकर फाइनल में बनाई जगह। खिताब के लिए बांग्लादेश से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने झारक्राफ्ट के उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पर्यटन स्थलों पर बिक्री को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में डिफेंस कॉन्क्लेव की स्मारिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। श्री सेठ ने झारखंड के उद्यमियों को रक्षा क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
4: देखो, देश के अंदर हर चीज इंडिजिनस की ओर बढ़ी है। मतलब प्रधानमंत्री जी का जो से है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, उसी स्वदेशी के भाव को लेकर हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में रक्षा विभाग भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 25-26 का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 38,424 करोड़ रुपीज गया।
3: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बोकारो में धनबाद और बोकारो से संबंधित 20 शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने बीसीसीएल भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की शिकायतों का त्वरित समाधान आयोग की प्राथमिकता है।
5: बोकारो और धनबाद मिलाकर के 20 मामले थे, अलग अलग मामले थे, कुछ सर्विस मैटर भी थे, एट्रोसिटी से संबंधित मामले हैं और विकास से संबंधित मामले थे। कई लोग, उनका जमीन अधिग्रहण कर लिया गया था और माइनिंग भी हो गया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिली। आयोग के संज्ञान में आया और आयोग ने दोबारा तिबारा हियरिंग करने के बाद में आज वो केस सक्सेस हो गया, उनका जमीन क्लियरेंस हो गया।
3: रांची के गोपाल प्रसाद बर्मन पहले एक छोटी चाय की गुमटी चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन सीमित पूंजी के कारण व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। गोपाल का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिले क्रमिक ऋण का उपयोग कर उन्होंने पहले चाय नाश्ते का कारोबार बढ़ाया और बाद में अटल स्मृति वेंडर मार्केट में कपड़ों की दुकान शुरू की।
6: पहला तो कि ये लोन रेडी पटरी वालों के लिए था, वो मैं छोटा सा चाय का दुकान चलाता था तो सोचा अगर कुछ पैसा मिल जाता तो इससे हमारा व्यवसाय में प्रगति होता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है हम जैसे लोगों के लिए मील का पत्थर है और इनकी सहायता लेते हुए अपने व्यवसाय को आगे से आगे ले जाने का कोशिश करें तो वो सफलता जरूर हासिल।
3: रांची नगर निगम ने हरमू नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए मापी अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर वार्ड 23 के हिंदपीढ़ी स्थित हरमू नदी तट का भौतिक सत्यापन कर अतिक्रमण की श्रेणी में आने वाली संरचनाओं को चिन्हित किया गया।

0: निगम ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य आगे भी जारी रहेगा और रिपोर्ट तैयार करने के बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के मुद्दे पर गठित मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सहमति नहीं बन सकी। समिति के अधिकांश सदस्यों ने इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया, जबकि कुछ मंत्री इसके पक्ष में रहे। अब समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी। इस मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ में संस्कृत भारती की ओर से 7 दिवसीय संस्कृत भाषा संवर्धन आवासीय शिविर की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉ. सरोज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में पूरे राज्य से लगभग 150 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर कोडरमा थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में कोडरमा विधायक नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई। घटना में मृतक की बेटी, माता और पिता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। विधायक डॉ. नीरा यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस पर पूर्व शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
1: इसमें पूरी साजिश उस थाना प्रभारी की है, जिनको बार बार आगाह किया जाने के बाद भी वो फोर्स नहीं भेजे, ना खुद गए और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिलाए। अगर उनकी मां को जब मिट्टी के अंदर दफनाया जा रहा था, उस समय कार्रवाई करके वो पकड़ के लाए रहते, जो जान रहे कि कौन उसको कर रहा है, तो इतनी बड़ी आज घटना नहीं घटती।
0: हजारीबाग के कटकमदाग में 2 नाबालिग भाई बहन के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी ने बच्चों को मोबाइल दिलाने के बहाने स्कूटी पर बिठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर हत्या कर दी।
2: इस घटना के उद्भेदन के लिए एसआईटी लगातार काम कर रही थी और इसमें संजीत पासवान करके अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। और इसके अरेस्टिंग के बाद जिस वाहन का प्रयोग किया गया था और जिस बोरे वगैरह और जिस कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, उन सब चीजों की रिकवरी भी एफएसएल टीम ने आकर किया है।
0: जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में फायरिंग, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा के अनुसार विशेष जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
3: कार्रवाई हुई है, इसमें एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक खोखा पिलेट और एक स्कूटी और 4 एंड्रॉइड मोबाइल भी इनके द्वारा इनके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इनके पास से प्राप्त हुए। और इसी प्रकार से इसमें मतलब काफी 3 दिन के अंदर अंदर में ये इस प्रकार की कार्रवाई की गई है और बहुत एक कुछ गैंग से इनका संबंध भी सामने आने की संभावना है।
0: मौसम केंद्र ने 3 से 8 जून के बीच राज्य के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, वज्रपात और गर्जन की संभावना जताई गई है। फुटबॉल। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम 6 साल बाद टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। मैच का एकमात्र गोल 58वें मिनट में सनफिदा नोंगराम ने किया। पहली बार की चैंपियन भारतीय टीम का फाइनल में 6 जून को बांग्लादेश की टीम से मुकाबला होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने लिखा है 6 कमरों की अनुमति, चल रहा था 6 मंजिला होटल, आग से 11 विदेशी सहित 21 जिंदा जले। दैनिक जागरण ने लिखा अवैध होटल में आग, 21 की मौत। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रातू में छेड़छाड़ के आरोपी को भीड़ ने मार डाला। दैनिक भास्कर की लीड है, ममता को झटका, 58 विधायकों का असली तृणमूल होने का दावा। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन तेज करने का दिया निर्देश। पारंपरिक शिल्पकारों के प्रशिक्षण को बढ़ाने पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, रक्षा उत्पादन में एमएसएमई की बढ़ेगी भागीदारी। झारखंड के उद्यमियों को मिलेगा रक्षा क्षेत्र में नया अवसर। जेटेट में भोजपुरी, मघी और अंगिका को शामिल करने पर मंत्रियों की कमेटी में नहीं बनी सहमति। अंतिम फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 8 जून तक तेज हवा, वज्रपात और गर्जन की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और गोवा में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को हराकर फाइनल में बनाई जगह। खिताब के लिए बांग्लादेश से होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 8:44 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

중에 베셔 헬멘테 프로그램 모닝 멜로디 मॉर्निंग मेलोडी प्रोग्राम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हीरो से। गीत सुनने से पहले सुनिए ये जरूरी संदेश।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

एक बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ये इयररिंग दिखाना?
1: गया तेरा प्राइस मनी।
0: कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती,
2: आते समय कर लिया, मोबाइल से
0: कहाँ?
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में।
0: हाँ,
2: RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पर गारंटीड रिटर्न्स,
0: नो ब्रोकरेज,
3: नो हिडन फीस।
0: मान गए, आपको नहीं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: लता मंगेशकर के गाये हुए फिल्म हिना के इसी गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। मॉर्निंग मेलोडी अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: It's 9 o'clock.

विशाल मिश्रा की आवाज में हक फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कौशल किशोर ने इस गीत को लिखा था, विशाल मिश्रा ने इस गीत की धुन बनाई थी। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गदर 2 फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह की आवाज में सईद कादरी की बोल है मिथुन का संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में गदर 2 फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन यानी दिवस है, यानी हिंसा और आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बच्चों की दुनिया सपनों और उम्मीदों से भरी होती है, उनकी सुरक्षा, प्यार, दुलार, शिक्षा उनका अधिकार है। लेकिन जब हिंसा और संघर्ष जीवन में प्रवेश करता है तो सबसे अधिक प्रभावित बचपन होता है। बहुत सारे बच्चे अपने परिवार, घर और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और मानसिक भावनात्मक आघात का सामना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1982 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य दुनिया का ध्यान उन निर्दोष बच्चों की ओर आकर्षित करना है जो किसी न किसी रूप में आक्रामकता और हिंसा का शिकार हुए हैं। ये दिवस सिर्फ संवेदना व्यक्त करने का अवसर नहीं, बल्कि हम सभी को बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के जिम्मेदारी का भी स्मरण कराता है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और अस्थिरता का वातावरण है, इन सब से होने वाले दुष्प्रभाव में बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बच्चों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण कैसे प्रदान करें। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ संस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, समाज, स्कूल की भी समान भागीदारी ये आवश्यक है। बच्चे प्रेम, विश्वास और संवाद का बच्चों को ये वातावरण मिले, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षा, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उन्हें हिंसा और शोषण से बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। घर, परिवार, विद्यालय, समाज सभी की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों का उचित संरक्षण, देखभाल हो, उचित शिक्षा व्यवस्था हो, भयमुक्त प्रेमपूर्ण वातावरण मिले ताकि वे अपने सपनों को खुलकर जी सकें। चित्रलोक कार्यक्रम में हम आपको सनम रे फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं।

0: सनम रे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। शान की आवाज में मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और जीत गांगुली ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
6: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
5: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
6: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
7: सखी सहेली।

श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में आरक्षण फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। प्रसून जोशी ने इसे लिखा था और शंकर एहसान लॉय ने तर्ज बनाई थी। दोस्तों, आज महान पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम का जन्मदिन है, उन्हें सादर नमन। एसपी बाल सुब्रमण्यम भारतीय

टी सिनेमा के उन दुर्लभ गायकों में से हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सहित कई भाषाओं में अपनी मधुर आवाज से करोड़ों श्रोताओं के दिलों में अपना विशेष स्थान बनाया है। आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9:30 पर आज का फनकार केंद्रित होगा एसपी बाल सुब्रमण्य पर, जरूर सुनिएगा। अब चित्रलोक कार्यक्रम में एक और गाना।

हीर एक्सप्रेस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी सिमर कौर और नवीश रन की। हरमनजीत का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना। अब सत्यमेव जयते 2 फिल्म का ये गाना।

ज़ारा एहसान और जास मनक की आवाजों में ये सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची और जास मनक थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से। अब चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार और आप स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, समृद्ध रहिए, इसी कामना के साथ आज यहीं से इजाजत लेते हैं। नमस्कार।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द फन।
0: दोस्तों आज के प्रोग्राम में फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक एस पी बाल सुब्रमण्यम।

1981 की फिल्म एक दूजे के लिए अपने सुपरहिट गीत और संगीत के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देकर एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अपना दूसरा नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसके पहले 1980 में एसपी बाल सुब्रमण्यम को डायरेक्टर के विश्वनाथ निर्देशित तेलुगु फिल्म शंकरा भरणम के लिए भी अपने बेहतरीन गायन के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पहला नेशनल अवार्ड मिल चुका था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर सिंगर ख्याति पा चुके थे।

4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूलापेटा में जन्मे एसपी बाल सुब्रमण्यम का परिवेश पूरी तरह से संगीतमय था। उनके पिता एक हरी कथा कलाकार थे और उन्होंने कई मंचित नाटकों में भी काम किया था। एसपी बाल सुब्रमण्यम की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही हारमोनियम और बांसुरी बजाना सीख लिया था। हालांकि इंजीनियर बनने की चाहत में एसपी बाल सुब्रमण्यम ने अनंतपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया, लेकिन स्टडी के दौरान बीमारी की वजह से रुकावट भी आई, मगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान 1964 में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेकर अवार्ड भी जीता। बहुत प्यार।

0: गायन का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर एसपी बाल सुब्रमण्यम प्रोत्साहित होते रहे, आगे बढ़ते रहे और बाद में एक लाइट म्यूजिक ट्रुप के प्रमुख गायक बन गए। उस दौरान गिटार और बाद में बांसुरी पर उनका साथ दिया करते थे संगत के रूप में इलैया राजा, जो बाद में संगीतकार भी बन गए।
1: वो तो बना

दोस्तों एसपी बाल सुब्रमण्यम की फिल्मों में गायन की शुरुआत 15 दिसंबर 1966 में एक तेलुगु फिल्म से हुई। ये फिल्म थी श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना। उसके चंद दिनों बाद 1966 में ही कन्नड़ फिल्मों के लिए और 1969 में तमिल फिल्मों के लिए भी अपने गायन की शुरुआत करके एसपी बालसुब्रमण्यम चर्चा में आ गए। अपने दौर के दिग्गज कलाकारों जैसे जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन की आवाज बनकर उभरे। एसपी बालसुब्रमण्यम को जी देवराजन ने मलयालम फिल्मों के लिए भी गायन के लिए इंट्रोड्यूस किया। एसपी बालसुब्रमण्यम उन दिनों साउथ में अपने गायन के चरम पर थे। व्यस्तता का आलम यह था दोस्तों कि 1981 में 8 फरवरी को 12 घंटे की अवधि में कन्नड़ भाषा में 21 गाने गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाद में तमिल में एक दिन में 19 और हिंदी में भी 16 गीत एक ही दिन में गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।

दौर की साउथ की जानी मानी फीमेल सिंगर्स जैसे पी सुशीला, एस जानकी, वाणी जयराम और एल आर ईश्वरी के साथ भी एस पी बालसुब्रमण्यम की बेहतरीन ट्यूनिंग रही और उन्होंने तमाम युगल गीत गाए। आगे चलकर महान संगीतकार बने इलैया राजा के साथ एस पी बालसुब्रमण्यम का जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, जब इलैया राजा उनके ऑर्केस्ट्रा ट्रुप में महज हारमोनियम और गिटार वादन किया करते थे। उनका ये जुड़ाव बाद में बना रहा और कई गीतों को रचकर और भी पक्का हो गया। 1989 में एस पी बालसुब्रमण्यम ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपनी आवाज दी। फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म के साथ साथ गानों ने भी धूम मचा दी थी। इस फिल्म के दिल दीवाना गाने के लिए एस पी बालसुब्रमण्यम को फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

बाद में सलमान खान के लिए ही एसपी बालसुब्रमण्यम ने हम आपके हैं कौन फिल्म के गाने गाए, जो सुपर डुपर गीतों की श्रेणी में शामिल हो गए।

दोस्तों यहाँ काबिले जिक्र है कि एसपी बाल सुब्रमण्यम को कई लोग बतौर गायक ही जानते हैं, जबकि वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, के भाग्यराज, मोहन, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, अर्जुन सरजा, नागेश, कार्तिक, रघुवरन जैसे हिंदी और साउथ के तमाम कलाकारों के लिए साउथ की विभिन्न भाषाओं में वॉइसिंग भी कर चुके हैं एसपी बालसुब्रमण्यम। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाने वाले एसपी बालसुब्रमण्यम को अब तक 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक दिन में अधिकतम गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तेलुगु सिनेमा का नंदी अवार्ड्स लगभग उन्हें 25 बार हासिल हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के और भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुके एसपी बालसुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा सन 2001 में पद्मश्री और सन 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एसपी बालसुब्रमण्यम अपने सबसे बड़े अवार्ड को मानते हैं अपने प्रशंसकों की गुनगुनाहट के जरिए, वो जो उनके गीत गुनगुनाकर खुशियों में डूबे रहते हैं।

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीमती सावित्री, एक बेटी है पल्लवी और एक बेटा है एसपी बी चरण, जो खुद भी पार्श्व गायक और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बाल सुब्रमण्यम ने फिर से एक बार हिंदी की ओर शुरुआत की 2013 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी पार्श्व गायन करके। संगीतकार विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में उन्होंने ये गीत

एस पी बालसुब्रमण्यम दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत तथा हिंदी फिल्म संगीत के इस महान पार्श्व गायक का निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ। विविध भारती परिवार की ओर से एसपी बालसुब्रमण्यम की यादों को विनम्र नमन।

0: था पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी
1: कहिए ना
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर
3: शुक्रिया शुक्रिया
2: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662 तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात सुनिए अपनी पसंद के गाने

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो के घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:40 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: नाइन एट सेवन सिक्स

0: हेलो हजारीबाग
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत है आप ही के इस कार्यक्रम में। एक घंटे के इस गीत संगीत और नई नई जानकारियों से भरी दिलचस्प कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं अली शब्बीर, कीजिए अभिवादन स्वीकार, नमस्कार। दोस्तों आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस सुविचार और खूबसूरत गीत के साथ। मेहनत वो सुनहरी चाबी और वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। अगर अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी बन जाती हैं।

दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के दिन की, आज की तारीख की, कि 4 जून को इतिहास में कौन सी ऐसी घटनाएं घटी थी, वो मामला और सानहात पेश आए थे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। तो इस सिलसिले में पहली बात आती है सन 1919 ईस्वी की। आज ही के दिन 1919 ईस्वी में अमेरिकी सीनेट ने 19वां संवैधानिक संशोधन पारित किया, जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। 1970 में आज ही के दिन टोंगा ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर एक संप्रभु राष्ट्र बना। और 1940 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डंकर्क से लगभग 3 लाख ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों की सुरक्षित निकासी हुई। 1942 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रसिद्ध मिडवे का युद्ध शुरू हुआ, जिसने प्रशांत महासागर में युद्ध की दिशा बदल दी। 2006 ईस्वी में आज ही के दिन यूगोस्लाविया के पूर्ण गणराज्य मोंटेनेग्रो में स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा की। 1929 ईस्वी में आज ही के दिन जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली रंगीन फिल्म का नमूना दुनिया के सामने पेश किया। और 1997 में आज ही के दिन दूरसंचार उपग्रह 2D को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया। 1989 ईस्वी में आज ही के दिन चीन की राजधानी बीजिंग में थेन आनमन चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों और छात्रों पर सेना द्वारा बर्बर कार्रवाई की गई थी। और सन 2001 ईस्वी में आज ही के दिन नेपाल के तत्कालीन राजा दीपेंद्र और शाही परिवार के सदस्यों का निधन हुआ, इसके बाद ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने नेपाल के सम्राट का पद संभाला था।

दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें कुछ चर्चा करते हैं उस खूबसूरत मनोरंजक दिलकश माध्यम की कि जिसके जरिए हम आपसे रूबरू हैं। जानकारियों की बातें मधुर गीतों और संगीत की आवाजें आपके कानों में गूंज रही हैं जिससे आप लुत्फ सरूर से भर जाते हैं। देश दुनिया जहान की खबरों से आप बाखबर होते हैं और जागृत होते हैं। जहां दोस्तों हम बातें कर रहे हैं जन जन की वाणी आकाशवाणी की। दोस्तों आकाशवाणी अपने 90वां वर्ष का गौरवशाली वर्ष पूरा कर रहा है। दोस्तों हम बातें करेंगे इस पर और भी, लेकिन फिलहाल रुख बदलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा संगीत।

दसवीं वर्ष आकाशवाणी अपने आगाज से अब तक नब्बेवां वर्ष का गौरवशाली वर्ष मना रहा है। दोस्तों, जन जन की वाणी आकाशवाणी भारत के सबसे बड़े जन प्रसारक आकाशवाणी ने अपनी स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR किया गया था, जिसे 1956 में आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी का नाम दिया गया। और ये जन जन की वाणी कानों तक ही नहीं, दिलो दिमाग से होते हुए रगों पे में समा गया। आज इसके जरिए हम दुनिया जहान की खबरों से बाखबर होते हैं, नई नई जानकारियों से अवगत होते हैं और गीत संगीत के जरिए दिलो दिमाग को सुरूर बख्शते हैं। उदास घड़ियां भी हमारे लिए रंगीन और हसीन हो जाती हैं जब हम आकाशवाणी से जुड़ते हैं और इसके जरिए हमारी आपकी यानी एक दूसरे की बातें एक दूसरों तक पहुंचती हैं। दोस्तों, 1936 में अपनी विनम्र शुरुआत के बाद से आकाशवाणी ने राष्ट्र के निर्माण, सूचना, संस्कृति और मनोरंजन के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा के मशहूर पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम की का जन्मदिन है, उन्हें को समर्पित सुनते हैं मैंने प्यार क्या फिल्म का गाया हुआ उनका ये गीत।

थोड़ी सी एक नजर डालते हैं आज के तापमान और मौसम के पूर्वानुमान पर। तो दोस्तों, आज दिन का तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम होगा, जबकि रात का तापमान 24 डिग्री होगा, ये न्यूनतम है। और आज भी बादल छाए रहने, बारिश की संभावना है, तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, ऐसी भी संभावना व्यक्त की गई है।

दोस्तों, आखिर में थोड़ी बात जन जन की वाणी आकाशवाणी की। तो दोस्तों, भोजन हिताय भोजन सुखाय के मूल मंत्र के साथ ये आकाशवाणी नेटवर्क आज भी सुदूर ग्रामीण इलाकों से लेकर महानगरों तक निष्पक्ष और प्रामाणिक खबरों का प्रमुख स्रोत है। आज के डिजिटल युग में भी आकाशवाणी ग्रामीण भारत विशेषकर किसानों की जीवन रेखा बनी हुई है। किसान वाणी और कृषि चौपाल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये देश के अन्नदाताओं तक मौसम की सटीक जानकारी, वैज्ञानिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। दोस्तों, ये और इस तरह की और भी मजीद जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले कार्यक्रम में। आज आप बस यहीं तक। दीजिए इजाजत और आप लीजिए इस गीत का आनंद।

0: 8 7 6 5 4 3 2 1.
1: हेलो हजारीबाग, खबर आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 11 बजने को है। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हमारा अगला कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: श्रोताओ नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

रंग तरंग कार्यक्रम का आगाज हमने किया हरिओम शरण की इस गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ, प्रेमांजलि एल्बम से, जिसे हसरत जयपुरी ने लिखा था। अब बढ़ते हैं छाया गांगुली की गाई मीराबाई की इस पारंपरिक रचना की ओर।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने भक्ति सुधा एल्बम से छाया गांगुली के स्वर में मीराबाई की यह पारंपरिक रचना सुनी, जिसे संगीत से संवारा था।

की आवाज में अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एल गजल एल्बम से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर रंग तरंग कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं देव कोहली के रचना और आनंद राज आनंद के संगीत की ओर।

0: देव कोहली के बोल थे आनंद राज आनंद का संगीत, शुभा मुद्गल और समुद्र की आवाजों में आप सुन रहे थे ये मोहब्बत है एल्बम का ये गाना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रोशन के संगीत से सजी ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। दिल ही तो है फिल्म का नाम था और साहिर लुधियानवी का कलाम। चलिए अब एक नाजुक से गीत की ओर बढ़ते हैं।

है प्रेम एल्बम से ये बड़ा ही नाजुक सा सॉफ्ट सा गाना आपने सुना। श्याम अनुरागी ने इसे लिखा था। आवाज और संगीत का जादू मिलिंद इंगले का था। चलिए अब अगले एल्बम में आवाज का जादू है मोहित चौहान और कायम त्रिवेदी के साथ अतुल मित्तल का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

बज़्म ख्याल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज़ में आपने अहमद वसी का ये कलाम सुना और यही थी आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय

0: क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं लेकर यादों

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज सबसे पहला जो गाना शामिल किया वो 100 डेज फिल्म से था। एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ लता मंगेशकर की आवाज, दिलीप ताहिर ने इसे लिखा था, राम लक्ष्मण का मचलता संगीत। और मेरे ख्याल से आपने ये गाना सुना और आप जान ही गए होंगे कि आज यादों की महफिल में वो गाने शामिल हो रहे हैं जिनमें गायक आवाज है एसपी बालासुब्रमण्यम की। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है तो हम उनको उनके गीतों के जरिए याद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले गाने की ओर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में साजन और मैंने प्यार किया, इन दो फिल्मों के बाद अब बारी आ रही है वंश फिल्म के इस गाने की।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सागर फिल्म का ये गाना आपने सुना। साथियों, एसपी बालासुब्रमण्यम की गायकी का एक अलग ही अंदाज रहा है। हर भाव के गीतों को कितनी सहजता से समेट लेते थे। अब ये गीत ही सुनिए ना। गीत संगीत बोल आवाज सब कुछ कमाल।

को छू लेने वाले सच्चे बोल, जावेद अख्तर के सुरीला संगीत, राहुल देव बर्मन का गर्दिश फिल्म में इस गाने में आवाज एसपी बालसुब्रमण्यम की। चलिए यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ अलका याग्निक की आवाज में आपने मझधार फिल्म का गाना सुना। यादों की महफिल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ बेमिसाल गाने। और अब बारी है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों वाले उस गाने की जिसकी फिल्म का नाम है पत्थर के फूल।

तो भई पत्थर के फूल फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में, और यही गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। तो साथियों, आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आप तक पहुंच चुकी है और आप जान भी चुके हैं कि आज के टेक्स्ट में क्या है खास। तो चलिए हम आपको वो टेक्स्ट, वो इबारत पढ़कर सुना देते हैं। आज का टेक्स्ट है, आज भी जब पुराने गीत रेडियो पर गूंजते हैं तब श्वेत श्याम यादें आंखों में रंग भरती हैं। ऐसे में कोई खास सिर्फ याद नहीं आता, वो फिर से जी उठता है। वो भोली सी सूरत, गहरी आंखों वाली छबीली सुजाता ने भावनाओं का एक पूरा मौसम खुद में समेट रखा था। जाने कब वो बंदिनी बनकर छलिया, अनाड़ी, सौदागर, महाराजा सरस्वती चंद्र को छोड़कर सावन के महीने में कन्हैया की बांसुरी के रंग में अपनी चुनरिया रंग बैठी। कहां तक सुनाऊं साहब, इस छोटी सी गुड़िया की तो लंबी कहानी है, लेकिन आप खानदान की राधा से पेइंग गेस्ट का वादा तो सुने जरा। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो ये तो थी आज की इबारत और आप सभी जान चुके हैं कि आज इसमें क्या है खास और आज दिन कौन सा है, इसलिए हमने ये इबारत जो है वो इस तरह से आप तक पहुंचाई है। तो बहरहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, आज है 4 जून का दिन और आज जन्मदिन है अभिनेत्री नूतन का, तो ये इबारत उन्हीं के लिए है। वैसे आपको बता दें कि नूतन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी साथियों, बल्कि भारतीय सिनेमा की गरिमा और शालीनता की मिसाल थी। वो उन गीतों की रूह भी थी जो रेडियो से निकलकर दिलों में बस गए। उन पर फिल्माए गीतों को सुनकर यूं लगता है जैसे पुराने दौर का एक दरवाजा फिर से खुल गया है। इनकी फिल्में बीता हुआ वक्त नहीं साथियों, यादों की जीवित धरोहर हैं। अभिनेत्री नूतन जी को लेकर ढेर सारे कमेंट्स हमारे सामने हैं इस समय और बहरहाल हमारे साथी क्या लिख रहे हैं। हाँ देखिए, हमारे साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर के इस सुनहरे सफर में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, आज के गाने अवश्य यादगार होंगे। जी हाँ बिल्कुल, और आप सबका साथ इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाएगा। तो वहीं हमारे एक दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि 1 माह 5 दिन हो चुके हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में, आप आज आई हैं शायद पहली बार। अरे वाह, क्या बात है, इन्होंने दिन महीना सब कुछ याद रखा। बहरहाल आज हम आ गए आपके साथ। और एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है कि ये है सुरीली सफर की सही इबादत, इबारत नूतन जी के जन्मदिन पर उनके ही गानों पर परफेक्ट इबारत। वैसे भी हमेशा से ही आपने सही इबारत दी है और तहे दिल से शुक्रिया किया है, तो शुक्रिया आप सभी का भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ दिल से जुड़ने के लिए। तो दूसरे साथी लिख पड़े हैं कि आज गद्यांश को पढ़कर सुखद आश्चर्य हुआ, वाकई में हम जो सोच रहे थे वही यहाँ शब्द निरूपित हुआ, यानी एक अनन्य लाजवाब हुस्न मलिका पूर्णतः अभिजात अभिनेत्री नूतन जी की कहानी को सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोया गया है। कई दिन बाद शायद ये प्रयोग हुआ है। इन्होंने ढेर सारा धन्यवाद दिया है और लिखा है कि आज बेहतरीन गीतों की माला सजाई जाएगी। गानों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज गुजरे जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन जी की जन्म जयंती है, लिहाजा छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी है उन्हीं की फिल्मों के गीत हैं। जी हाँ बिल्कुल। आगे लिखा है कि नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले इस गद्यमयी इबारत में एक छोटी सी गुड़िया के मन की गुदगुदी भरी बड़ी सी कहानी का चित्रण बंदिनी, सुजाता, छलिया, अनाड़ी, महाराजा आदि के माध्यम से भली भांति उकेरा गया है और इस दृष्टिकोण से गुड़िया की कहानी जो वादे तक आती है तो हर हृदय को स्पर्श करने में पूरी तरह समर्थ है। और फिर तो भाई गीतों का सिलसिला शुरू करना ही पड़ेगा। और साथियों, चूंकि आज के टेक्स्ट में जिक्र है एक छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी का,
तो भाई आज के सुरीला सफर की कहानी का आगाज भी इसी गाने के साथ होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? इस गाने को सुनकर बताइएगा क्या राय है आपकी।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वैश्विक उपलब्धि। देशवासियों से किया नियमित योग अपनाने का आह्वान। रांची सदर अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन। झारखंड का पहला मुस्कान प्रमाणित सरकारी अस्पताल बना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अभ्यर्थी अब 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेल का नया कीर्तिमान। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवच 4.0 का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग में कोल्हान डायनामोज और संथाल चैलेंजर्स की जीत। सभी चार टीमों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गिरिडीह में महिला नियमित योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं। योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने बताया कि योग से न केवल शरीर बल्कि मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है।
1: तो यहाँ पर हम लोग मेन रूप से योग महिलाओं को निशुल्क सिखाते हैं ताकि हमारा कम्युनिटी, हमारा समुदाय जो है निरोग रहे और हमारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।

0: उन्होंने कहा कि स्वयं स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने के बाद अब वे अन्य लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रही हैं। वहीं सविता कुमारी ने भी योग से स्वास्थ्य में सुधार होने का अनुभव साझा किया और लोगों से नियमित योग अपनाने की अपील की।
1: मेरा नाम सविता कुमारी है, मेरा सीओजी नियापुर है। योग बहुत अच्छा चीज है, योग करना चाहिए। योग से क्या है कि शरीर हल्का लगता है, मेडिसिन छूट जाती है और शुगर है, थायराइड है, ये बीपी है, सब कंट्रोल रखती है।
0: केंद्र सरकार के मुस्कान कार्यक्रम के तहत रांची का सदर अस्पताल अब नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन में अस्पताल ने 96.1% अंक हासिल किए। अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, पेडियाट्रिक वार्ड और पेडियाट्रिक ओपीडी को भी उत्कृष्ट अंक मिले। अस्पताल प्रशासन ने इसे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और प्रशासनिक टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। जेटेट में भाषाओं के चयन को लेकर गठित समिति की बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जेटेट केवल प्रतियोगी परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षकों की स्थायी भाषाई और सांस्कृतिक समझ का आकलन करने वाली पात्रता परीक्षा है। वहीं मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने की वकालत की।
2: वैसे जिले जहां जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती है वहां कम से कम आप हिंदी भाषा को जो तो अवश्य जोड़ी। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि संख्या बल पर किसी नीति का निर्धारण होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो धरातल की वास्तविक स्थिति है उसके आधार पर वो कोई सापेक्ष निर्णय लेंगे।
0: जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आवेदन लेने की तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जेटेट के कुछ अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनुपलब्ध होने पर प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई होने की सूचना पर ऐसा निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उत्तर रेलवे ने अत्याधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच वर्जन 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू किया है। इसके साथ उत्तर मध्य रेलवे में कवच नेटवर्क 445 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो भारतीय रेल में किसी एक खंड पर स्थापित सबसे बड़ा कवच सिस्टम है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रणाली दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता को और मजबूत करेगी। कोडरमा विधायक नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने कोडरमा थाना के सामने रांची पटना मुख्य मार्ग को करीब 4 घंटे तक जाम रखा। एसडीओ निर्मल सोरेन ने बताया कि मामले में अब तक 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी उच्च अधिकारियों को भेजा गया है।
3: घटना हुई है, यहाँ कोडरमा जिला के लिए बहुत ही खल है और घटना की गंभीरता को देखते हुए ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी नामजद अभियुक्त है मतलब उनकी जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तारी की जाए।
0: जमशेदपुर के टाउन हॉल सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बूथ लेवल एजेंट बीएलए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
4: और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सांगठनिक ढांचा है, जो स्वरूप है, अब बीएलए 2 से प्रारंभ होगा। बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी और केंद्रीय कमेटी, और हमारा जो सबसे मजबूत जो कमेटी होगा वो कमेटी हमारा बूथ कमेटी होगा, जिसके माध्यम से हम राज्य के विकास को और बेहतर ढंग से लोगों तक पहुँचा पाएंगे।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार लगभग 0.2% की बढ़त के साथ

छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 8 विकेट से हराया, जबकि दूसरे मैच में संथाल चैलेंजर्स ने पलामू वॉरियर्स को 6 विकेट से पराजित कर दिया। जेएससीए पदाधिकारियों ने कहा है कि महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस लीग में भाग लेने वाली सभी 4 टीमों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जापान के काकामिगाहारा में खेले जा रहे पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में भारतीय जूनियर टीम का सेमीफाइनल मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। भारत ने पूल ए में दूसरा स्थान हासिल कर अंतिम 4 में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान की टीम पूल बी में शीर्ष स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की नजर पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाने और खिताब जीतने की अपनी दावेदारी मजबूत करने पर होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वैश्विक उपलब्धि, देशवासियों से किया नियमित योग अपनाने का आह्वान। रांची सदर अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन, झारखंड का पहला मुस्कान प्रमाणित सरकारी अस्पताल बना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, अभ्यर्थी अब 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेल का नया कीर्तिमान, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवच 4.0 का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग में कोल्हान डायनामोस और संथाल चैलेंजर्स की जीत, सभी 4 टीमों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

तो ये वही फिल्म थी, वही गाना था जिसका आपको इंतजार था। छबीली फिल्म का गाना था और आवाज अभिनेत्री नूतन की थी। जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि आपको अभिनेत्री नूतन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आपके दिल के करीब है, तो हमारी एक साथी लिख रही हैं कि उनकी किसी एक फिल्म को चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिल्म सौदागर में उनका अभिनय मेरे दिल को छू गया। तो वहीं दूसरी सखी ने भी लिखा है कि नूतन की सौदागर मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बेबस बेवा की शक्ति रूप का शानदार प्रदर्शन है। सच में साथियों, उनकी हर फिल्म में उनका क्लास अभिनय हम सभी के दिलों में आज भी बसा है। एक साथी ने लिखा है कि नूतन जी मेरे जन्म से पहले की अदाकारा हैं, परंतु उनकी कई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में मैंने दूरदर्शन पर, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर देखी हैं और उनकी नई फिल्में सिनेमा हॉल में भी देखी हैं। वे सदाबहार अदाकारा हैं। एक साथी ने लिखा है कि बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है और आगे लिखा है कि इस फिल्म में नूतन द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सशक्त अभिनय में से एक माना जाता है। कल्याणी का चरित्र एक ऐसी शांत महिला का है जिसके भीतर जुनून और वेदना का ज्वालामुखी उबल रहा है। उन्होंने बिना किसी लाउड ड्रामे का अभिनय बहुत ही कोमलता और गरिमा के साथ इस भूमिका को जिया। उनकी संवाद के बजाय अपनी आंखों से उन्होंने सूक्ष्म चेहरे के भावों से अपनी पीड़ा और असमंजस को पर्दे पर उतारा। वो प्यार, त्याग और अपराध बोध के द्वंद्व को केवल एक नजर से बयां कर देती थी। फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरह अपने प्यार, अपनी जिंदगी त्याग कर अपने पुराने प्यार की तरफ लौटती हैं, क्या कोई सिने प्रेमी उनके इस किरदार को, अदाकारी को भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता साथियों, कोई भी नहीं। और इतने भावों को अपनी आंखों से बयां करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक साथी ने लिखा है कि नूतन की फिल्मों के गानों, विशेष रूप से लता मंगेशकर जी द्वारा गाए में उनका जो लिप सिंक होता है इतना सटीक और स्वाभाविक होता था कि वे गीत सीधे उनके किरदार का हिस्सा लगते थे। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि उनकी सारी फिल्में, नूतन जी की सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म खानदान बचपन में दो आना टिकट दर पर देखी थी, पारिवारिक फिल्म सपरिवार देखी थी। नूतन जी की फिल्मों से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो जरूर साझा कीजिए साथियों। और हाँ, अपनी लिस्ट के गाने

टिक करना मत भूलिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन कौन से गाने मेल खा रहे हैं। एक कमेंट आया है कि नूतन महज एक अभिनेत्री नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के कैनवास पर उकेरी गई एक ऐसी जीवंत कविता थी जो बिना किसी शोर के सीधे दिलों को छू लेती हैं। चेहरे पर सादगी, अभिनय में सहजता और कैमरे के सामने हमेशा ईमानदारी रहने वाली नूतन की अभिनय शैली, संवाद अदायगी और उनकी भाव भंगिमाओं में दर्शक बन जाते हैं। नूतन अपने किरदार में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि सिनेमा घर से बाहर निकलने के बहुत बाद भी उनकी हर हरकत, हाव भाव, नजर और संवाद मन में बसे रहते हैं। उनकी आंखें शब्दों से अधिक कह जाती हैं। नूतन आज भी उस पहली बारिश की महक की तरह हमारे दिलों में महकती हैं, जिनकी यादें वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं होती। बहुत अच्छी बातें आपने बहुत अच्छे शब्दों को पिरोकर लिखी हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मैंने भी आज की इबारत से एक पैराग्राफ बनाया है और पुराने रेडियो गीतों की मधुर धुनें जब श्वेत श्याम यादों को फिर से जीवंत कर देती हैं तब मन अनायास ही उन सुनहरे पलों में खो जाता है। कभी सुजाता की मासूमियत दिल को छूती है तो कभी बंदनी की भावनाएं मन को बांध लेती हैं। अनाड़ी, छलिया, सौदागर और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों के किरदार आज भी यादों में वैसे ही बसे हैं जैसे सावन में कन्हैया की बांसुरी की मीठी तान। वाह, क्या बात है। आगे लिखा है, चुनरिया के रंग, राधा का प्रेम, छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी और एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने जैसे गीत पुराने दौर की मोहब्बत और अपनापन फिर से महसूस करा देते हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने भेजा है कि आज की इबारत में एक नूतन प्रयोग किया गया है जिसमें अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों को जोड़कर इबारत बनाई गई है। आज छैल छबीली अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों और उनके शानदार अभिनय और बढ़िया गीतों से सुरीले सफर को सजाया गया है। अपनी आंखों से अभिनय को जीवंत करने में माहिर नूतन जी ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। श्वेत श्याम फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और ढलती उम्र में भी माँ की भूमिका में भी अपने बेहतरीन अभिनय से वो स्थान बरकरार रखा जो वो शुरुआती दौर में था। ऐसी महान अभिनेत्री नूतन जी को विनम्र नमन। एक कमेंट आया है कि नूतन जी हिंदी सिनेमा के सबसे संजीदा और सहज अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। उनकी आंखें ही संवाद बोलती थीं। फिल्म बंदनी में कल्याणी की खामोशी हो या सुजाता में अछूत लड़की की पीड़ा या फिर तुलसी तेरे आंगन की मिस सौतन की जटिल भावनाएं, उनकी आंखें ही बोल देती थीं। सत्यजीत रे जी ने कहा था कि नूतन की आंखों में ही स्क्रिप्ट लिखी होती है। नूतन जी ने अपने हर किरदार को जिया है। उन्होंने आदर्श नायिका की परिभाषा बदली और उनके किरदार कमजोर नहीं बल्कि हालातों से लड़ने वाले ज्यादा रहे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। और जैसे कि बात बंदनी की चल ही रही है तो जब बात चले बंदनी फिल्म के जिक्र आए तो उस फिल्म का ये गाना ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता।

हाँ तो साथियों, ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब बंदनी फिल्म का जिक्र हो, और आज भी ये गाना सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखें हमारे साथी लोग क्या कहते हैं। वैसे जब बहुत सारे साथियों ने उनकी मुस्कान और आंखों के बारे में लिखा है, तो सच में साथियों, नूतन जी की मुस्कान में मासूमियत थी, उनकी अदाकारी में गहराई थी, सादगी उनका आभूषण थे और प्रतिभा उनकी असली पहचान थी। और वो सिर्फ पर्दे का सितारा नहीं थी, बल्कि वो हैं भारतीय सिनेमा की अमर विरासत। चलिए देखते हैं हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि बंदनी सौदागर, मेरी जंग, कर्मा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता, मिलन और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी पसंद की हैं। आगे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की बंदनी, अनाड़ी और सौदागर तीनों फिल्मों में उनका काम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन काम लाजवाब है। उनकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं फिल्म सीमा, बंदनी, सुजाता, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की यादगार फिल्म है। वैसे बचपन में दिल्ली का ठग देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी उसके एक गाने के लिए। वो गाना कौन सा है जरा ये तो बता दीजिएगा। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं नूतन जी के सब फिल्में तो मैंने देखी नहीं है, मुझे नूतन जी अभिनीत बंदनी और सौदागर फिल्म में उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो वहीं वैसे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की 1973 की सौदागर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, जो नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है। ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। रविंद्र जैन का जादुई संगीत बेहद शानदार, गीत है तेरा मेरा साथ रहे में भी शामिल हो। इंतजार कीजिए ना। एक कमेंट में लिखते हैं कि नूतन जी उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्लाने या तेज संवादों की आवश्यकता नहीं होती। सीमा, सुजाता और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन्होंने जो रेंज दिखाई वो आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है ये बात। और दूसरे साथी लिखते हैं कि नूतन जी बहुत सुंदर अभिनय करती थी। उनकी कुछ फिल्में जो हमें पसंद हैं, सरस्वती चंद्र, बंदिनी, सुजाता, सीमा वगैरह वगैरह। एक कमेंट में सुजाता फिल्म के लिए लिखा है कि ये फिल्म समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद जैसी गंभीर रूढ़ियों पर चोट करती है। नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की सुजाता की मुख्य भूमिका निभाई थी। विशेषतः नूतन के अभिनय की सादगी और उनके द्वारा झेले गए सामाजिक दर्द को दर्शकों ने बेहद करीब से महसूस किया। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म ने नूतन को एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर संजीदा अभिनेत्री नूतन जी के जन्मदिन पर उन्हीं को समर्पित है। ये जानकर अच्छा लगा, शोभना समर्थ की बेटी ने अपने अभिनय से मां का नाम ही नहीं ऊंचा किया, उन्होंने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया एक आदर्श पत्नी, बहन, प्रेमिका, मां के रूप में जो स्थान पाया वो किसी अभिनेत्री को आज तक नहीं मिला। बंदनी फिल्म के लिए लिखा है कि 1963 की बंदनी बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट हमें लिख भेजा है, नमस्कार करते हुए, गुड आफ्टरनून करते हुए कि सुरीला सफर के लिए कि टुडेज द टेक्स्ट इज नाइस एंड इंडिकेट्स मेनी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स दैट विल बी द कंपेनियन ऑफ लिसनर्स इन सुरीला सफर फ्रॉम वंदिनी छलिया सुजाता सौदागर अनाड़ी सरस्वती चंद्र खानदान पेइंग गेस्ट टू तेरे घर के सामने ओनली नूतन जी एंड नूतन जी एक्सीलेंट स्पॉन्टेनियस ब्यूटिफुल एक्ट्रेस ऑल द बेस्ट.

0: एक कमेंट में लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर की हम सफर बन रही हैं अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्री और गायिका नूतन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं की फिल्मों से होंगे और उनके नाम की इबारत में बड़ी खूबसूरती के साथ शामिल किए गए। नूतन हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीता। और लिखा है आगे दूसरे साथी ने कि आज सुरीले सफर में होंगी वो बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत नूतन जी, जितनी हमारे बीच की सामान्य सी लड़की वहीं बेहद स्मार्ट नायिका छलिया अनाड़ी में। एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे, बहुत ही खास होगा आप सभी के साथ नूतन जी की बातें और खानदान का वो खूबसूरत गीत तुम्ही मेरी मंजिल, फूल तुम्हें भेजा है, ढेर सारे गाने इन्होंने लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब जो बातें चल रही हैं और इसमें जिक्र आ चुका है फिल्म सुजाता का, जो कि सभी साथियों ने लिखा है, तो फिल्म सुजाता का वो गीत जिसका आप सबको है इंतजार, और मुझे लगता है कि ये गाना निश्चित रूप से आप सभी की लिस्ट में जरूर होगा। बताइएगा जरा कि इस गाने में इनके साथ कौन है।
1: mm-hmm.

सुजाता फिल्म का ये गाना जलते हैं जिसके लिए। इस गाने को जितनी बार चाहो रेडियो पर सुनो या पर्दे पर देखो बहुत कम लगता है। कितना सहज है ये गाना और अभिनेता अभिनेत्री कितनी सहज अभिनय इसमें इन दोनों कर बैठे हैं। जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती हैं कि बंदिनी सुजाता और सीमा आगे लिखा है कि नूतन जी की किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज़्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बच चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के ज़माने की हीरोइन थी लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियाँ रहती थी उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुनील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्म अंकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा गहरी आंखें और मासूम अदाएं जीवंत उठती हैं। कहीं वो बंदिनी है कहीं अनाड़ी की नायिका तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन को छू जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है, उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो कन्हैया अनाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो या धर्मेंद्र के साथ अनेक रात की बनकर चुनरिया रंग ली हो या हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए, जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ, तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं।

तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज और फिल्माया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले हम नूतन जी की फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली धर्म अपनी धर्म पत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्म पत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी बड़ी ही मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहां पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज में गाए गए मजरू सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है। एसडी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूँ। जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुमरा में रहा करती थी। बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को खिलाया, बहुत सिंपल सा। और नूतन बुआ मराठी में बहुत सुंदर बातचीत करते हुए खुद को परोसा, गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाव कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं। लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है। गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को उनके 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था। उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया। नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के चार अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था। ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल। और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे उनका जो आंखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है, और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतजार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए जरूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके हैं।

सौदागर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी साथियों ने लिखा कि इस गाने में नायक थे अमिताभ बच्चन। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा तलाक देना दर्शकों को झकझोर गया था। दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवा गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवा गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही है, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही है, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट हो गई, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी प्रोग्राम नूतन जी पर है उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फिल्म चुननी बहुत मुश्किल है, मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदिनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नजर।

0: सुने।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री न्यूटन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सामने।
1: आप सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि अनेक साथियों के कमेंट शामिल हुए, उन सभी को बधाई और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी। दूसरे साथी ने लिखा, शानदार लाजवाब सफर रहा आपके साथ, गति में और संगीत में कार्यक्रम का धन्यवाद, प्रश्नों ने बांधे रखा। तो अब साथियों वक्त हो चला है कि आपसे ले लें इजाजत। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम सुरीला सफर को सुरीला और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद, फिलहाल आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी का विषय है मुलाकातें। दोस्तों, मुलाकातें क्यों जरूरी होती हैं? इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे विचार, भावनाएं और पहचान दूसरों के साथ संबंधों से आकार लेती हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो सिर्फ बातें नहीं होती, हाव भाव, आंखों का संपर्क, आवाज का उतार चढ़ाव, वे सब मिलकर सच्चा जुड़ाव बनाते हैं। यही वजह है कि आमने सामने की मुलाकातें रिश्तों में जान डालती हैं। मिलने जुलने से रिश्तों में मिठास आती है। इन मुलाकातों का असर मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ देता है।

दोस्तों, हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है। उनसे मिलने जुलने से हमारी सोच व्यापक होती है, पूर्वाग्रह कम होते हैं और सहानुभूति बढ़ती है। हम दूसरों की गलतियों और सफलताओं दोनों से सीखते हैं, जो किताबों से हमेशा नहीं मिल पाती। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय और मौजूदगी चाहिए। साथ बैठना, चाय पीना, खामोशी साझा करना, ये छोटे पल भरोसा बनाते हैं। मुश्किल वक्त में वही रिश्ते काम आते हैं जिनमें नियमित मुलाकातें होती रहती हों। अच्छी मुलाकातें यादें बनाती हैं, सालों बाद भी वही हंसी, वही बातचीत दिल को गर्म रखती है। जिंदगी सिर्फ कामों की सूची नहीं, बल्कि साझा अनुभवों का संग्रह है, और मुलाकातें ही उन्हें जन्म देती हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया

0: गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी पुष्टि करना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि

0: घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। भारती पर

0: शन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव।
0: शन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम शबाब।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में बाउंड्री का काम शुरू हो गया है। निर्माण कार्य की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। मौके पर पहुंचे कांके अंचल अधिकारी अमित भगत और पुलिस बल ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी उपजाऊ खेती योग्य जमीन है जिससे उनकी आजीविका जुड़ी है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर जामताड़ा में विशेष उत्साह है। भाजपा जिला महामंत्री अभय कुमार सिंह ने इसे विकास का स्वर्णिम युग बताया है।
3: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 12 साल लगातार सेवा पूर्ण हुई, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया, जिससे समय का भी बचत हुआ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बैंक से लोन लेकर समूह के माध्यम से व्यवसाय शुरू किया तथा सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान मिला।
2: वहीं ग्रामीण महिला सुलेखा मोहली ने कहा कि उज्ज्वला योजना और बैंक ऋण से महिलाएं सशक्त हुई हैं। अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने से देश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड की हिंदीगढ़ा पंचायत में महिला किसानों के लिए जलवायु स्मार्ट और जैविक कृषि पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कम लागत में टिकाऊ खेती के जरिए उत्पादन और आय बढ़ाना है। केंद्रीय वर्षा आधारित ऊपरी भूमि धान अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शिव मंगल प्रसाद और डॉक्टर सोमेश्वर भगत ने महिलाओं को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की विस्तृत जानकारी दी। चतरा के इको पार्क में आज विश्व पर्यावरण दिवस के सप्ताह व्यापी कार्यक्रम के तहत भव्य पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। 3 श्रेणियों में हुई इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषयों पर अपनी रचनात्मकता के माध्यम से प्रकृति बचाने का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू में पुलिस विभाग की आपातकालीन प्रणाली मजबूत करने के लिए डायल 112 के तहत 36 आधुनिक बाइक शामिल की गई है। DIG किशोर कौशल और SP कपिल चौधरी ने इन GPS और सायरन से लैस गश्ती वाहनों को हरी झंडी दिखाई। अधिकारियों के अनुसार इससे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और त्वरित रिस्पांस सुनिश्चित होगा।
4: ये झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों को 4-पहिया वाहन और 2-पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, जिससे कि सघन रूप से गश्ती सुनिश्चित की जा सके। उसी चरण में पहले 4-पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, 2-पहिया वाहन भी उपलब्ध कराए गए, जिससे पलामू पुलिस के द्वारा और उसके गाड़ी जैसे GPS लगाया गया।
2: पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 के आयोजन की घोषणा की गई। यह 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव आगामी 26 से 28 जून तक रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा।

जाएगा। आयोजन समिति के सचिव पोलन मित्रा और नवीन सहाय ने बताया कि इस फेस्टिवल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें केवल झारखंड के फिल्मकारों द्वारा निर्मित फिल्मों का ही प्रदर्शन किया जाएगा। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने रांची सहित राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं मॉडर्न पेंटाथलॉन नेशनल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी यानी JSSPS के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बाइथल इवेंट में आरती कच्छप ने रजत और आतासी कुमार ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। दोनों खिलाड़ी होटवार के JSSPS स्विमिंग सेंटर की हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही है।
1: अब कहां नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ, तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
2: और वो छू मंतर हो गया सारा। हाँ। सारा दर्द, क्योंकि देखिए ना हर किसी के जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं। भले ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
1: बिल्कुल,
2: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी ने कुछ कह दिया
2: किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, प्यार भाई गले से लगा लिया तो वे खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो
1: श्रोताओं के कमेंट्स कैसे
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
0: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खासतौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो पहन ले, और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की जिंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गए इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी, और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए,
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी, कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग, कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई, और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए, 5 रुपए आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे।

0: और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कह दिए कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी, जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
1: क्या बात है।
0: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते। और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी कितनी गौरव की बात है।
1: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
0: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है।
1: और
0: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था, तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुनकर।
1: बिल्कुल। और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें

0: तो सोनाली जी, ये गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था वो एक वटवृक्ष की तरह था,
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठे, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें।
1: और हम लोग है ना, हम लोग भारतीय, खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ते चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस घुटने तक ही कर दिया।
0: अब तो घुटने तक
1: बस इतना करते हैं, पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। इसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है, विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
0: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद उन शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है, जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी, और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, गले लगते हैं, तो उसके क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं, जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे, तो ये बातें याद रह जाती है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है, इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे,

0: अलग अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो जाती थी। लेकिन अब वो समय कहाँ है? और अब समय एक गाना सुनाने का,
1: सुनते हैं कि

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे
0: स्पर्श के माध्यम से
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है। ममता जी, हमारे
0: नीबर ने लिखा था ये गाना और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माए, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते।

0: हैं, क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं, वो हमारा प्यार स्नेह समय और स्पर्श ही चाहती है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी हैं क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ लिया और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाएं, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
1: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
0: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
0: क्या बात है भाई,
1: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं।
0: जी तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता
1: हाँ
0: आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
1: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका भी ध्यान रखे आप।
1: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी कि कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: कहाँ हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहाँ हमें गले लगाना।
0: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी,
0: आम बहुत खास है कहने
1: आम
0: को,
1: आज आम खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में।
1: हाँ।
0: फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइप, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के कभी काट के। तो आप बताइए, आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब
1: मुझे तो
0: काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर
0: डाल दी।
1: फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते हैं, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस दो तीन फाक खा लो
0: बस। हाँ, मतलब एक आम जैसे तैसे,
1: हाँ,
0: उससे ज्यादा नहीं खाना।
1: और
0: है,
1: फिर अगर तो ये आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान।
0: अच्छा, तो मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं,
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इनके शौकीन होंगे, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी, तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ,
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं,
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आम रस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोतापरी एक ने लिखा है, चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा, इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में खास तौर से ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता
1: बहुत
0: है,
1: बहुत अच्छा लगता है वो आम,
0: तो उसमें जो
1: भी बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत नहीं,
1: जरूरत ही नहीं है उसमें, और वो तो हम लोग ना बारिश होती

0: है ना, उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता
1: अभी
0: है।
1: लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में खासतौर से केसर आम,
0: हाँ
1: बहुत मीठा आ रहा
0: केसर आम है। फिर उसके बाद में जो बैगन फल्ली आम जो आता है, वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं। मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है। सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ।
1: बिल्कुल। और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं
0: जी।
1: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं, भले खाए नहीं लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं
0: जी,
1: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीखकर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
0: अपने आप
1: पनप जाते हैं, उग जाते हैं। जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम लगाए हैं और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत, जहां गए वहीं खा लिया। यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता
0: हाँ।
1: था और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा लेते
0: और वो छोटे छोटे चूसने वाले आम थे ममता
1: हाँ,
0: जी
1: हाँ।
0: वो आते
1: और आप तो कह रही कि एक आम दो फाक तो
0: ओ ममता जी, उस जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था,
1: उसमें
0: पर अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना?
1: और उसमें केमिकल नहीं होता
0: हाँ,
1: था, कोई भी
0: केमिकल नहीं,
1: कोई दवा मिला के नहीं, वो सीधे देसी आम।
0: खेलते कितने थे ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी, जैसे आमरस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रख कर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे
0: और आम का यहाँ पे
1: और आम का पना भी बनता था और साथ में गांव में तो आम के, आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे। तो ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही नहीं रही।
0: और आम की जो रोटी भी बनाते थे, आम का रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
1: आम पापड़,
0: आम पापड़ उसमें डाल के उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
1: अमावट भी कहा जाता है जिसे। तो और बोलिए,
0: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं और आम बैगन फल्ली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी

0: का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहां जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
1: आप एक गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राहे प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वारफली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है,
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है। और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में

0: कैलोरी ज्यादा होती है तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था।
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना है,
1: बिल्कुल मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना सुन।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा
1: मुख्य समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। पलामू जिले के राजहरा रेलवे स्टेशन पर आज कोयले से लदी एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के कारण अपलाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है और कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रुकी हुई है। डाल्टनगंज स्टेशन प्रबंधक उमेश कुमार ने घटना की पुष्टि की है। सरायकेला खरसावां में भाजपा के 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। जिला अध्यक्ष हरिकृष्णा प्रधान ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शक्ति केंद्र पर वृक्षारोपण कर किया जाएगा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने आज अपनी मांगों को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और प्रमोशन में घेराव आरक्षण लागू करने के लिए मांग की गई। मोर्चा के अनुसार इस घेराव का मुख्य उद्देश्य ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। सिमडेगा के ठेठई टांगर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर करीब 8.5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। मामले में दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं जबकि तीसरा आरोपी फरार है। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि तस्कर ओडिशा से गांजा लाकर यहां पुड़िया बनाकर बेचते थे। जामतारा प्रखंड कार्यालय में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सुविधा केंद्रों को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया है। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि जून महीने में पूरे जिले के प्रखंडों और वृद्धा आश्रमों में विशेष शिविर चलाकर बुजुर्गों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: होना चाहिए नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
3: नमस्कार सर जी।
2: नमस्कार,
3: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
2: क्या बात है, कैसी हैं आप?
3: बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
2: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
3: हर मौसम का अपना मजा है सर जी, यदि अपन बारिश में फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएंगे ना।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
3: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सभी मौसम के आदी हैं और हमें हर मौसम में अपने उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
2: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
3: हाँ, फिल्म का नाम है हम आपके है कौन।
2: अच्छा,
3: उस फिल्म में लता मंगेशकर एंड एसपी बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
2: जी।
3: गीत के बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: से जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है, ये वाला गीत सर जी।
2: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
3: नहीं, हम यहीं पर पैदा हुए सर जी, जब एमपी था मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई एमपी में, बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और एमपी।
2: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
3: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
2: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना।
3: हाँ, मी नच्चुकुन्ने पाटा।
2: अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको थोड़ा छोटा बोलिए।
3: वेनवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा।
2: वेनवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा, सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश,
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल के। टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आके टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, रूही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच नहीं रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर
0: जी, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम अपने एमपी सागर से बिक्रम सिंह और पचाली राजा।
0: बिक्रम सिंह, सागर में कौन से इलाके से बोल रहे हैं?
1: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला।
0: अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है जी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है अभी, अब तो थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तक में।
0: अच्छा कितनी बारिश हुई, बहुत सारी हुई या थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं भाई है।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अभी तो 9 तपा चल रहे कि खत्म हो गए?
1: जी सर, बिल्कुल 3 दिन बाकी हो सर,
0: तनक बाकी है 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए, फिर मौज हो जाए। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं ये बताओ?
1: हमको सुनना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नंबर है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।
0: ए दद्दारे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ।
1: जी आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया, आपसे बात करके
1: आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है
1: जी। आपका बिल्कुल सर बुंदेलखंड जैसा बटका है, बिल्कुल आपका
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा क्यों मारा
3: क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों
4: मेरी भैंस को डन

मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं, एक तारा मेरे भैंस को डंडा।

हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी कौन?
1: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ।
0: ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा बताइए क्या हालचाल है पीतमपुर के?
1: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं
1: जी?
0: अब हमें ये बताइए, हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
1: गर्मी से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी अपने साथ लेके जाए।
0: बहुत सही, बिल्कुल,
1: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले।
0: सही बात है। अच्छा बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: गाना फिल्म का नाम है सूरज तुमसे इतना प्यार है।
0: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे एनसीईआरटी का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है एनसीईआरटी की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी,
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओ एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
2: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ,

0: लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
0: जी,
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं, ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ, जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी,
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे, मैग्नेटिक हिल?
0: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ?
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है, वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: It's a huge boundary. It goes wide through the offside. Yeah.

0: That's it. India win.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
2: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
2: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
3: कौन? ओह, अनुष्का,
2: जिशा,
3: तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
4: क्या अभी आपके पास समय होगा?
3: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
2: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
3: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का।
4: जी वही।
2: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
3: अच्छा।
4: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
3: और
2: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
3: हाँ, बोलो।
4: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही हैं। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
3: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
4: 5000 वर्ष पहले?
3: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
2: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
3: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
4: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
3: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
4: अच्छा।
3: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
4: जैसे
3: इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
4: वैदिक समूह?
3: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
4: भरत?
2: भरत नाम तो हमने सुना है।
3: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
4: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
3: हाँ।
4: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
3: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
4: अच्छा।
3: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
2: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
3: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
4: वो क्या सर?
3: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिदू या हिंदू कहा है।
2: फारसियों ने सिंधु को हिदू या हिंदू कहा है,
4: भला ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
4: अच्छा।
3: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
4: है ही नहीं?
3: हाँ।
4: ऐसा कैसे?
3: ऐसा है, स की जगह उन्होंने हा का प्रयोग किया।
4: ओ।
3: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू,
3: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
4: तो फिर
3: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
4: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
3: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
2: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
3: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
4: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
3: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं।
2: अच्छा
3: हाँ।
2: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
3: बिल्कुल,
2: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
3: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
4: अच्छा
3: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
2: अच्छा
3: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
4: वो क्या?
3: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
2: जम्बूद्वीप?
3: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
4: जम्बूद्वीप?
3: हाँ।
4: ये नाम भला क्यों?
3: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
4: अच्छा
3: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
4: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
3: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
4: इतने सारे देश?
3: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
2: अच्छा सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष
4: और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
3: बिल्कुल,
4: ये नाम कैसे आए?
3: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
4: जी सर।
3: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
2: अच्छा
3: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
4: ओ।
3: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
4: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
3: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
2: ओ,
3: हाँ।
2: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था
4: और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
3: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
2: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
3: बिल्कुल,
2: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
3: हाँ?
2: और हिंदुस्तान?
3: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
4: अफगानिस्तान।
3: बिल्कुल सही।
2: बलूचिस्तान।
3: सही।
4: तुर्किस्तान।
3: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
2: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
4: अच्छा? हाँ, बिल्कुल।
3: अरे वाह, क्या बात है।
4: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
3: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।

0: अच्छा
1: हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग,
2: वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
0: सबके साथ?
1: हाँ, सबके साथ।
3: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
7: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
8: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
9: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
8: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
9: हाँ पूछो बेटा।
8: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
9: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
7: लेकिन माँ,
9: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ
8: जी,
9: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
8: अच्छा माँ, ये लो माँ।
9: ला।
7: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
8: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
9: क्या मिल गया
8: मुझे? माँ माँ माँ,
9: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
8: मुझे मिल गया।
7: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
9: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
8: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
7: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
8: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
9: कुछ भी तो नहीं।
7: कुछ भी तो नहीं है।
8: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
7: वो तो है मगर
8: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
7: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
8: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें है?
7: हाँ
8: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
7: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
8: ठीक है, आओ मेरे साथ।
9: अरे सुनो, अरे खाना तो

0: बैठे जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
1: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
2: अरे
3: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
4: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
5: हाँ भाई, भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
4: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
5: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
4: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
5: भला कोई चीज उड़
2: सकती है?
5: अरे भाई साहब, जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
6: भाई साहब हट जाइए।
4: आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
5: अरे अरे, वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
4: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ,
5: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो, एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
4: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
5: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
4: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
5: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे
4: मान गए, कमाल कर दिया बच्चों ने।
5: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
4: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
5: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
4: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो देखो, गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
5: अरे शाबाश, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
4: वो देखो वो देखो, गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
5: अरे अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
1: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था, लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था, और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार, नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब मरीज अस्पतालों में दवाओं के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई लाखों रुपए की दवाइयां जंगलों में फेंकी जा रही है। रांची के पुराना विधानसभा सभागार में आज संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बैठक में देरी से आने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आज बोकारो सर्किट हाउस में धनबाद और बोकारो जिले से जुड़ी 20 शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान बोकारो डीसी अजय नाथ झा और एसपी नाथु सिंह मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरेंद्र कुमार मौर्य ने आज गोड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां बन रहा वॉशिंग पिट एक महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे गोड्डा से लंबी दूरी की नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकेगा। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, एक रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के बाइथल स्पर्धा में प्रेम किशोर महतो ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं दीपांशु सिंह और अतासी कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है किसानों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले इन सब किसान भाई बहन के प्रशांत के देने से जोहार और सब गोटे के कार्यक्रम में स्वागत हो किसान भाई बहन। आज ये कार्यक्रम में हमारे संगे थी नमता बहन तो नमता बहन तोरो जोहार
1: जोहार प्रशांत भाई और साथे कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के हमारे देने से भी जोहार प्रणाम। और देख ला हम इन कार्यक्रम में आ गए है ढेर मनी बातचीत कर पे और
0: हाँ
1: साथ में जे आज कुछ जरूरी बातचीत भी करबे। जैसे कि हम इनके जे पहला बात हम इन करबे वो है कि खेत बचाए अभियान।
0: हाँ।
1: कि खेत बचाए के बहुत जरूरी हो गए है।
0: बिल्कुल।
1: खरीफ फसल के तैयारी हम इन कैसे कर सको ही है और कब करे के चाहिए काका उकर में जरूरी है एकर पर चर्चा करबे। और साथ में जे है हम इन प्राकृतिक खेती के अपना के कैसे हम इन अपना पर्यावरण के सुरक्षित रख सको ही
0: एक सही
1: पर बात करबे। और साथे जो है किसान से हम इन मिलेबे।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: तो कला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ
3: पर हम तो सब ही डाले हैं
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
3: सच है
2: रे बेटे

0: एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल स्मेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी अल्टीटेड की खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: तो देखा हमने जरूरी संदेश से पहले बात कर थली है कि आज जो है से हम इनके यहाँ अभियान चल रहा है खेत बचाओ अभियान।
4: हाँ हाँ।
3: जे 1 जून से लेकर के 30 जून तक है से अगर है अभियान के चलवे के है।
4: अच्छा।
3: राज्य सरकार और केंद्र सरकार के देने से दोनों देने से ये अभियान चल रहा है। ये अभियान के खास बात है जो हो ने नमता बहिन।
4: हाँ हाँ।
3: सबसे पहला चीज हो कि अपन माटी के कैसे है से स्वस्थ रखल जाए।
4: हाँ।
3: एक बारे में है। दूसर बात है कि किसान भाई बहन की आमदनी के कैसे दुगना करल जाए। और तीसर बात हो जाए कि हम इनके कम पानी में खेती कैसे बढ़िया कर सकलिए, पर्यावरण के कैसे हम इन्हें से सुरक्षित रख सके, संतुलित रख सके हुई। सबसे पहला चीज बता दिए कि माटी के जैसे सुरक्षा के बात है, एकर स्वास्थ्य के बात है। तो ई हो जाए कि जब तक माटी तू जांच ना करेगा तब तो तुहरा माटी के ऐसे बीमारी के बारे में पता न चलतो कि माटी हमारे में का एकर में खनिज लवण के कमी है, कौन उर्वरा शक्ति के एकर में कमी है, ताकि हम एकर में उर्वरक डालिए कि ऐसे हम खाद डालिए, कौन किस्म के है जरूरत। तो जोन चीज के कमी रहो है, फास्फोरस हो गलो, पोटेशियम हो गलो, आर तरह के खनिज लवण है, तो ये सब की कमी अगर रहो है तो ओकर हिसाब से बतावल जाए कि ई माटी में इतना है मात्रा में डाले से ई माटी के उर्वरा शक्ति में वृद्धि होते और फसल के लिए अनुकूल हो जाते
4: एकदम।
3: लेकिन अगर तोरा जानकारी ना हो, तोरा है से प्रत्येक साल तू डालते जा ओकर में खाद, यूरिया डालो हा, DAP डालो हा, फास्फोरस डालो हा, पोटास डालो हा, और तरह के ऐसे हम इनके ओकर में मन विटामिन मिनरल्स सब डालो ही है, तो ओकर में डाले से की हुआ है कि तोरा एक आदत पड़ गलो डाले के, तोरा आदत पड़ गलो और जमीन के खाए के आदत पड़ गलो, तो जमीन है से लाचार हो जाए लास्ट में, और लाचार हो जाओ तोरा तो उर्वरा शक्ति ओकर कम हो जाए, पैदावार तोरा प्रभावित हो जाए, तो पैदावार तोरा ना बढ़तो तो तोरा ऐसे जेब से खर्चा भी जा लगल हो आ रहे से पैदावार भी प्रभावित हो रहा हो
4: एकदम।
3: संगे संगे तोरा ऐसे शारीरिक कष्ट भी होता ओकर से, कहे कि माटी जब तोरा दूषित हो जाए तो तोरा जब हम इनके दवा बीरो दावत डाल ले जेबा, खाद डाल ले जेबा, तो माटी के भीतर जो पानी हम इनके रिसो है वो पानी हम इन फिर है से पियो भी
4: एकदम
3: है कि नहीं। तो ई चीज वह हम इनके एक तरह से जल दूषित हो जाए। दूसर में जो हम इन यूरिया डालो ही है, यूरिया ऐसे भाप बन के जो उड़ो है वो वायु में हम इनके मिलो है, वो है से हम इनके वातावरण खराब करते है।
4: एकदम सही कहला प्रसन्न भाई। और देखला हम इनके ई चीज देखे के भी है, खेत भी बचावे के है और कोशिश करे के कि कम खर्च में हम इन खेती करिए, और सबसे बढ़िया तरीका एकर में ये है कि परंपरागत तरीका से हम इन खेती करिए
3: एकदम।
4: काहे कि देखला पहले की जो खेती हो हले तो उस समय ना तो कोई माटी के जांच कराओ हले और ना ही यूरिया DAP रासायनिक खाद के कोई नामो निशान नहीं हले। लेकिन कहले कि भाई माटी स्वस्थ जे हमीन उपजाऊ है लिए उस शुद्ध और हमीन भी सेहतमंद रह लिए
3: बिल्कुल।
4: तो ई चीज पर हम इनके ध्यान दिए के है कि तनी हम इनके खेती करे के जो तरीका है वो तनी हम इनके पाछू हटेले पड़ते।
3: देखा तो एकदम सही बात बोल रहा है, तो कि पहले के जमीन के खेती के बातचीत हले हम इन्हें परंपरागत विधि से करो
4: एकदम,
3: ओकर में रासायनिक कोई तरह का उपयोग हमीन उर्वरक हो गलो
4: या कीटनाशक के बात
3: हमें जानकारी भी ना प्रयोग भी ना हो।
4: हमरा तो याद है कि जैसे कि हम इनके बाप दादा जब खेती करो ले तो उस समय खाली गोबर खाद, मतलब जे भी गोबर हो ले तो ओकरा का है कि खादा में जमा करके पुरान जब हो जाए तो वो गोबर के इस्तेमाल, लेकिन कभी भी दवा छिड़कते न दिखलिए।
3: हाँ,
4: तो मतलब कीड़ा लगबे न करे होले, बीमारी न हो होले कोई तरह के, माटी भी स्वस्थ। और जो है कि गोबर खाद लगातार इस्तेमाल करे से का हो है कि माटी में जो है नमी धारण करे क्षमता बढ़ जाए, मतलब अगर तू एक बार पानी पटेबा तो वो ज्यादा समय तक नमी बनल रहो है और भूर भूरा रहो है, ओकर में केचुआ ज्यादा पनपो है और केचुआ ज्यादा रहो है माटी में तो हमीन भी जानो है कि भाई केचुआ किसान के मित्र हो है, तो वो कौन तरीके से माटी के जो है भूर भूरा बनाओ है, खाद जैसा पूरा माटी एकदम करिया दिखो है गोबर वाला माटी और काफी उपजाऊ क्षमता ओकर में बढ़ जाए है।
3: बिल्कुल ये खतील है कि हमरिन के है से ये अभियान के जो बात करल गेल है, ये अभियान में है से केवीके के देने से जा जाके प्रशिक्षण भी देवल जा रहा है किसान भाई बहन की कि केचुआ खाद कैसे बनो है, ओकर कैसे उपयोग करल

0: क्या है, माटिक जांच करावे से का फायदा मिलो है। संगे संगे ई भी जानकारी देवल जा रहा है अभियान में कि तोरा केसीसी करे से का लाभ हो, कैसे करावे पर तो एकर संगे संगे किसान मानधन योजना भी चले थे एकर भी जानकारी देवल जा रहा है, एकर में फसल बीमा योजना के भी जानकारी देवल जा रहा है। तो ई सब चीज से सरकार जे कर्मचारी हथी उ सब जा करके उ सब के जोर देवल जा रहा है किसान भाई बहन के ज्यादा से ज्यादा लाभ से जोड़िए, ताकि है किसान के कोई तरह के क्षतिपूर्ति हो है, कभी देखबा के आपदा आ जाए,
1: कभी फसल बीमारे आ गले, बाढ़ आ गले, या चूहा मुसे तो कहला कि बर्बाद कर दे फसल, बहुत तरह से प्राकृतिक कारण से जो है
0: बर्बादी
1: हो जाए।
0: हाँ, तो उस सब के लिए फसल बीमा हो, तो किसान भाई बहन के जागरूक करे के ई अभियान चल रहा हो। खेत तू अपन है से कैसे सुरक्षित कर सके, माटी के कैसे स्वस्थ कर सके, ज्यादा पैदावार कैसे ले सका, एक बारे में किसान भाई बहन के जागरूक करल जा रहा हो ई अभियान के जरिए
1: एकदम।
0: तो हम इन कार्यक्रम में आगे भी हम इन बनल रहे, आप धर सुनोइए जरूरी संदेश

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: जरूरी संदेश के बाद आप फिर चलो ये खेती बाड़ी देने।
7: हाँ हाँ।
6: और देखा कि अब धर के समय हो न माता बहन की खरीफ फसल के लगवे के तैयारी करे के
7: एकदम।
6: अब धर देख रहा है कि जोन तरीके से रौद कर ले है, जोन तरीके मौसम में उतार चढ़ाव आ रहा है, अभी तो गर्मी पूरा है ये है
7: एकदम।
6: तो ऐसा में है कि हम इनके खेत के है से सबसे पहला चीज हो कि
7: गहरा जुताई करे।
6: हाँ, ताकि ऐसे पूरा रौद आ जाए, पूरा एकदम माटी
7: एकदम, मतलब भीतर तक के जो कीड़ा मकोड़ा हो है
6: वो
7: सब ऊपर आ जाए है।
6: हाँ।
7: गहरा जुताई करे से आज रौद कड़ा रौद लगो है तो उकर से उमर भी
6: नष्ट भी हो जाए, और उकर अलावे देखा कि बहुत तरह के खरपतवार रो है
7: वो भी मर जाए,
6: खत्म हो जाए उकर से। तो हम इनके सबसे पहला चीज हो कि गहरा जुताई करके है से ओकर में छोड़ना हो
7: एकदम।
6: जब है से कम एक आध सप्ताह तक ले छूट गेलो ओकर बाद है से ओकर में तू गोबर मिला करके तू पाटा करके छोड़ दे
7: ओकरा,
6: एकदम मट्टी के पाटा बराबर कर देना हो खेत चारों बगल से, ताकि ऐसे हम इनके पानी कहूं संगरो न। अगर पानी कहीं संगर जेतो तो समझ ला कि जतना तू खाद है जेकर देवल है हम इनके, जैसे गोबरे खाद के बात कर ला, केचुए खाद के बात कर ला, तो का हुआ है कि पनिया जब मारो है ना तो एक जगह जमा हो जाए जा करके, तो उधर के उर्वरा शक्ति तोहर कमजोर पर गलो, इन्हें के एक जगह जमा हो गलो तो इन्हें ज्यादा हो गलो, तो दोनों दने से नुकसान हो।
7: मतलब माटी के बढ़िया से मतलब गोबर जो खाद जो है बढ़िया से मिला दिए के ताकि पूरा मिल जाए
6: और
7: बराबर कर दिए
6: पाटा से पूरा एकदम खेत के बराबर। हाँ। कर देवे खो ओकर बाद हो से तोरा एक चीज और ध्यान रखना हो कि जब हम इनके खेत में पानी लग जाओ तो मेड़ के जो हम इनके सुधारे काम रू है वो ऐसे पूरा मेड़ बंधन हो जाए बढ़िया से, कहे कि मेड़ अगर तोरा बढ़िया मजबूत रहतो तो तोहर ऐसे खरीफ फसल यानी कि तू धाने के मेन करल जाए तो धान के फसल तोहरा ऐसे बढ़िया पैदावार दे मेड़ के कारण। अगर मेड़ तोरा कमजोर पड़ गलो तो तोहर ऐसे खर जेकर में डालला तू उर्वरक चाहे खाद जो तरह की चीज डालला है ओकर से वो बह करके तोरा ऐसे बर्बाद हो जाते
7: चल जाते हैं।
6: हाँ, वो बन जो तालाब में चल जाते या तो नदी में।
7: खेते खेत जैसे जुड़ल रहो है ना तो एक खेत में जितना डाले है वह खाद के मात्रा वो दूसरे खेत में चल जाता है तो खेत के मात्रा कम हो जाता है खाद के।
6: हाँ।
7: तो इस सब चीज के लिए भी है कि जो मेड़ मजबूत हो के।
6: हाँ, और दूसर में कि मूसा उसा भूसा सब लागो थे ओकरा ऐसे एकदम पूरा तरह से मुइन देना हो
7: एकदम,
6: तब ई आर के एकदम पगार के एकदम बढ़िया से एकदम ठीक कर देना हो ओकर बाद है से ओकर में धान के ओकर में शुरू करल जाए। तो सबसे पहला चीज हो कि धान के है से बिहन के शुरुआत हो जाए तो ओकर लिए आर भी बहुत सा चीज है कि हम इन बीज के बढ़िया चुनाव करिए।
7: हाँ।
6: ताकि बीज के अगर बढ़िया चुनाव करबे तभी हम इनके धान के है से बीजा तैयार हो तो बढ़िया से, तब हम इनके है से पैदावार बढ़िया हो। तो
7: एकदम
6: जब है से बीज तू चयन बढ़िया से कर

0: तो बीज के है से हम इनके है से फफूंदी नाशक से
1: उपचार करेंगे।
0: अगर तू उपचार न करवा फफूंदी नाशक से तो हर समझ ला के तुहर फसल में बहुत तरह के रोग व्याधि लग सको
1: एकदम। कभी कभी जैसा ऐसा हो है ना प्रशांत भाई के भाई हम इन है कि बीज खरीद ले लिए उन्नत किस्म के हाँ। भाई उन्नत किस्म के तो बीज है ये है तो एक उपचारित काहल कर
0: हाँ।
1: तो ई गलती न करे के है
0: बिल्कुल। तो जो फफूंदी जनक जो रोग हो एक संभावना रो है वो फफूंदी नाशक से खत्म हो जाए तो ई सब किसान भाई भी जरूर ध्यान रखती। और अब चलो ये जानकारी देने और जानकारी लेके आन ले ये भाई कि मशरूम उत्पादन के तरफ जो महिला सबके है वो उत्साह कैसे बढ़ रहा है महिला सब कैसे उत्पादन में पसंद कर रहा थी एकर बारे में और जानकारी देवे था थी
1: रेखा कुमारी और इनकर से बातचीत कर रहे थे प्रशांत कुमार
0: तो सुनल जाए।
2: किसान भाइयों हमारे हुए हैं ग्राम पुंदरी में और हमारे साथ एक युवती हैं अभी देख रहे हैं कि ये मशरूम उत्पादन कर रही हैं और ये मशरूम उत्पादन कितने दिनों से कर रही हैं इनसे जानेंगे। और अभी देखिए कि मशरूम का है सो मांग भी बाजार में काफी है और मशरूम के बहुत सारे फायदे हैं ये देखते हुए इसके उत्पादन में जो इजाफा हो रहा है दिन प्रतिदिन ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। मार्केट में मशरूम बहुत बिक रहा है और लोग इसे अब अपने भोजन में शामिल किए हुए हैं चाहे वो किसी विशेष प्रकार का पार्टी फंक्शन हो शादी ब्याह हो या फिर अपने घर में खाने के लिए उपयोग में लाते हो। मशरूम हर दृष्टिकोण से फायदेमंद है। अभी जानते हैं कि इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है कौन कौन सी सामग्रियां इसमें उपयोग में लाई जाती हैं और किस प्रकार से इसका उत्पादन किया जाता है। हमारे साथ हैं रेखा कुमारी। तो रेखा जी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है नमस्कार।
3: नमस्ते।
2: हमें आप बताएं कि ये मशरूम का उत्पादन कितने दिनों से कर रही हैं?
3: हम तो 3 साल से कर रहे हैं सर।
2: 3 साल से कर रही हैं। कौन से मशरूम का उत्पादन करती हैं आप?
3: बटन मशरूम का करते हैं।
2: बटन मशरूम का करती हैं। तो बटन मशरूम उत्पादन करने के लिए इसका प्रशिक्षण आपने कहाँ से प्राप्त किया?
3: जी सर रांची से किए थे।
2: रांची से किए थे
3: जी।
2: कितने दिन का प्रशिक्षण था ये?
3: 3 दिन का था।
2: 3 दिन का था। उसके बाद आप प्रशिक्षण से जब लौटी
3: जी
2: कोई सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिला था?
3: मिला था
2: सर्टिफिकेट मिला
3: जी।
2: यहाँ घर आई तो आपने उत्पादन इकाई खोलने की ठानी
3: जी।
2: उसके लिए शुरुआत आपने कैसे की?
3: हम लोग को यहाँ ग्रुप बनाया गया था सर हम लोग को बोले थे हम लोग आए तो सर हम लोग को बनाया जो बोल रहे ना सर कि पैकेट दिए थे वही पैकेट हम लोग को दिया गया था।
2: अच्छा।
3: और वो पैकेट में हम लोग को पैसा लगा था एक बैग में 30 रुपया।
2: अच्छा।
3: शुरुआत किए थे तो अब धीरे धीरे पुराना ग्रुप हो गए हैं तो 50 रुपया बैग करके ले रहे हैं
2: जी। अगर अभी आप नए शुरुआत नई जगह पे करना चाहती हैं तो सबसे पहले बटन मशरूम की शुरुआत करने के लिए मशरूम उत्पादन के लिए पॉलीबैग तैयार करना रहता है तो उसमें कौन कौन सी सामग्री आप डालते हैं?
3: गेहूं का डंटी हो गया चूना हो गया
2: जी
3: पुराना गोबर हो गया खाद वाला हो गया और फिर काला मिट्टी हो गया।
2: अच्छा।
3: और फिर मुर्गी का खाद हो गया पानी वगैरह रहता है
2: ये सब मिक्स कर देती हैं।
3: मिक्स किया हुआ मिक्स करना पड़ता है।
2: मिक्स कर देती हैं
3: जी।
2: मिक्स करने के बाद किस प्रकार से उसको बैग में डालती हैं?
3: 6 लेयर रहता है।
2: अच्छा।
3: 6 लेयर से नीचे वो रहता है खाद रहता है उसके ऊपर बीज रहता है बीज के ऊपर फिर खाद रहता है फिर बीज रहता है खाद रहता है उसी तरह 6 लेयर में डालना रहता है।
2: 6 लेयर में डालना रहता है
3: जी।
2: पॉलिथीन में भरने के बाद उसको लेयर बाय लेयर सजा देती है। उसके बाद है सो आपका जो एरिया है कितना बड़ा है जहाँ पे आप उत्पादन करती हैं?
3: जितना अपना बैग रहेगा उसी हिसाब से एरिया चाहिए।
2: अच्छा। कितना एरिया जिसे कैसे आप बैग कितना रखती हैं उसके लिए कितना चाहिए क्षेत्र?
3: एक रूम रहता है जो 12x10 रहता है
2: जी
3: उसमें 50 बैग लेता है।
2: 50 बैग
3: जी।
2: किस प्रकार से रखती हैं उसको?
3: एक लेन से ही रखे
2: जमीन पे।
3: जमीन पे।
2: अच्छा अच्छा। जमीन पे जितना आटा उसमें आप रख दिए
3: जी
2: ऐसा नहीं है कि जमीन से उठने के बाद फिर दूसरा लेयर बना के ऊपर
3: बनाया जा सकता है लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बनाए
2: खाली एक लेयर में जितना
3: एक लेयर
2: आया
3: में हम लोग रखे
2: जी। तो अब है सो अब जब रख देती है जमीन पे तो फिर क्या देखभाल करना होता है उसमें?
3: उसमें बिल्कुल गंदगी नहीं चाहिए
2: जी।
3: चप्पल पहन के नहीं जाना है गंदगी नहीं चाहिए गंदगी लगने के बाद में उसमें फंगस लग जाता है।
2: अच्छा अच्छा।
3: उसमें देखना पड़ता है 15 दिन के बाद मेंसिलिया आया कि नहीं आया जो हल्का व्हाइट व्हाइट रहता है
2: जी
3: उस देखने के बाद 15 दिन के बाद वो आ जाता है उसमें प्लास्टिक मोड़कर उसमें 1 इंच तक कैल्शियम मटेरियल डालना पड़ता है।
2: अच्छा।
3: फिर उसके ऊपर पेपर भी डालना पड़ता है।
2: अच्छा।
3: पेपर डालने के बाद एक दिन से दो दिन तक ले, उसमें देखने के बाद फिर पानी डालना पड़ता है कि कैल्शियम मेट्रिक सिर्फ उसी तक जा पानी।
2: अच्छा।

0: इस प्रकार से तोड़ने में भी सावधानी बरतनी है। अगर खींच के तोड़िएगा तो
1: उसमें जो अंदर में बीजा रहेगा वो साथ में आएगा,
0: साथ में निकल जाएगा वो, तो वैसे नहीं करना है
1: जी, नहीं।
0: मतलब तोड़ना है सावधानी पूर्वक
1: जी।
0: तो एक बैग से कितने बार तोड़ाई हो सकता है? अगर एक बार हम बीज की बुआई कर दिए हैं तो कितने बार उसमें तोड़ाई हो सकती है?
1: 4 से 5 बार तक तोड़ाई हो सकता है।
0: 4 से 5 बार तक। अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है, मार्केट ले जाना है, तो किस प्रकार से हम मार्केट ले जाएंगे उसको?
1: मार्केट में जाया जाता है, हम लोग को पैकिंग किया हो, पैकिंग करना पड़ता है।
0: पैकिंग
1: जी,
0: पैकिंग के लिए क्या क्या सामग्री होती है?
1: पैकिंग के लिए सिर्फ प्लास्टिक लाना पड़ता है।
0: केवल प्लास्टिक
1: जी।
0: तो उसको है सो पैकिंग कर देना है
1: जी।
0: और पैकिंग करने के बाद कितने दिन तक हो या कितने देर तक वो सही रह सकता है?
1: वो 3 दिन 4 दिन रह सकता है।
0: 3-4 दिन
1: जी।
0: उसको रखना किस प्रकार से? उसको फ्रिज में रखना है या फिर ऐसा ही मतलब कि नॉर्मल स्थिति में रह सकता
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं, फ्रिज में रखना है।
0: फ्रिज में रखना है
1: जी।
0: तो यहाँ से आप कितने पैकिंग, आपके जो है उत्पादन होता है वहाँ से कितना पैक है सो एक बार में निकलता है?
1: एक बार में हम लोग को 17 kg निकला था, वो पैकिंग किए थे, बोला 200 ग्राम तक पैक करके देना है
0: जी। तो ये थोक के भाव में किसी को दे दी थे या फिर मार्केट में जाकर के अपने से खुद से बेचे थे?
1: नहीं, दुकान में हम लोग दिए थे, जैसे सब्जी मंडी हो गया ना, उन लोग जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग को ऑर्डर होता है, बोला जाता है हम लोग इतना पैक चाहिए, इतना बैग चाहिए
0: जी।
1: मतलब जैसे पैकेट बनाया था वो बोलते हैं कि 1 kg 2 kg चाहिए, तो हम लोग वही हिसाब से उन लोग को देना पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ पर आप देती है तो किस भाव में वो लेता है?
1: 200 भाव में लेता है।
0: 200 रूपए kg के हिसाब से लेता है। 200 रूपए kg हिसाब में आपका है मुनाफा होता है
1: जी? होता है,
0: मुनाफा होता है
1: जी।
0: लागत अगर देखते हैं तो लागत कितना लग जाता है? बैग में कितना खर्च आता है?
1: एक बैग में 50 रूपए लगता है।
0: 50 रूपए लागत लगता है
1: जी।
0: और उसमें अगर एक बैग से क्या 1 kg उत्पादन नहीं होता है?
1: 1 kg 1.5 kg तक उत्पादन उसमें होता है
0: एक बैग से
1: जी।
0: तो समझिए कि कम से कम अगर 1 kg ही अगर मान के चले तो 50 रूपए लागत लग गया
1: जी।
0: और 150 रूपया हुआ सो मुनाफा आया। अगर उसमें भी अगर परिश्रम जोड़ दे तो 50 रूपया परिश्रम में रख दीजिए तो 100 रूपया है शुद्ध मुनाफा आपका निकल गया। तो बहुत ही बेहतर है अगर ये आप जैसी युवतियां या महिलाएं जो समूह से जुड़ी हुई होती हैं, तो अगर इस प्रकार के उत्पादन अपने यहाँ शुरू कर दें, मशरूम का उत्पादन, तो उनका जो है समूह और आगे बढ़ सकता है। बहुत ही अच्छा ये है बटन मशरूम का उत्पादन करना, क्योंकि बाजार में सबसे ज्यादा अगर मशरूम में मांग है तो बटन मशरूम का
1: जी।
0: ऑयस्टर वगैरह का ज्यादा मांग नहीं रहता नहीं। है लेकिन बटन मशरूम ज्यादातर बाजार में देखा जाता है, बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लोग इसे खाने में पसंद करते हैं
1: जी।
0: रेखा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आप बिल्कुल युवा हैं तो आप पढ़ाई लिखाई भी कर रही होंगी
1: जी।
0: तो पढ़ाई लिखाई कैसे मतलब कहाँ कर रही है?
1: हम लोग को पढ़ाई हजारीबाग में चल रहा है।
0: तो कहाँ तक पढ़ी है?
1: बीए में।
0: बीए कर रही है अभी, मतलब पढ़ाई जारी है
1: जी।
0: तो इसके साथ साथ ये स्वरोजगार के रूप में अपनाई, मशरूम उत्पादन के बारे में आपने जानकारी दी, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। अगर इसे दूसरे लोग करना चाहें तो उसके लिए वो क्या करें?
1: उन लोग भी कर सकते हैं, हम लोग ग्रुप बनाए हैं, उसी तरह उन लोग को भी ग्रुप बनाना पड़ेगा
0: जी,
1: उन लोग को भी करना पड़ेगा इसी तरह
0: प्रशिक्षण इसी प्रकार से लें। आप ग्रुप के द्वारा ये उत्पादन इकाई खोली हुई है या फिर अपने सेल्फ पे?
1: नहीं, ग्रुप पे।
0: ग्रुप में है ये
1: जी।
0: तो जो लागत लगता है उसमें बराबर के सभी हिस्सेदार हैं
1: जी,
0: मुनाफे में बराबर के हिस्सेदार
1: लागत का हम लोग का है ना, जैसे हम लोग 15 दिन में बैठक करते हैं।
0: अच्छा,
1: 15 दिन में बैठक हम लोग 2200 रूपए जमा करते हैं।
0: अच्छा,
1: जैसे एक डेट रखे है 15 तारीख 30,
0: तो 15 तारीख के डेट में आप 20-20 रूपए जमा करते हैं। ये प्रत्येक महीना?
1: प्रत्येक महीना में 2 बार, 15 तारीख 30 तारीख,
0: महीने में 2 बार, यानी एक महीने में 40 रूपए जमा करते हैं। तो ये कब से जमा करती आ रही है?
1: 3 साल से।
0: 3 साल से
1: जी।
0: तो रेखा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना अनुभव साझा किया, और हम चाहेंगे कि आप इसी प्रकार से दिन ब दिन तरक्की करती जाएं, भविष्य आपका उज्जवल हो, इसकी कामना करते हैं। आपने हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो देखला ये हलथिन रेखा कुमारी जे की मशरूम उत्पादन करो हथिन और कितना बढ़िया से करो हथिन, और देखला कि महिला सब एकर में उत्साह कहले देखेले हलथिन हथिन, और मतलब आगे बढ़े ले भी चाहो हथिन मशरूम उत्पादन में, कितना बढ़िया से बतेलथिन।
3: हाँ।
2: और इनकर से बातचीत करलथिन प्रशांत कुमार।
3: तब जानकारी भरल बातचीत के बाद अब चलो ये बाजार देने,
2: और आज के जो बाजार भाव काका रहले वो हमें बता दे ही है।
3: हाँ।
2: कि लाल आलू रहले 18 से 20 रुपए किलो।
3: हाँ।
2: सफेद आलू 12 से 15 रुपए किलो, प्याज रहले 20 से 25 रुपए किलो, फूल गोभी रहले 50 से 60 रुपए किलो,
3: और पत्ता गोभी 30 से 40 रुपए किलो, पटल 20 से 30 रुपए किलो, भिंडी 15

0: से 20 रूपए किलो, नेनुआ 30 से 40 रूपए किलो, कद्दू 40 से 50 रूपए किलो।
1: और वहीं हरा मरचा रहल 100 से 120 रूपए किलो, शिमला मरचा रहल 40 से 50 रूपए किलो, गाजर रहल 20 से 30 रूपए किलो, बीट रहल 20 से 30 रूपए किलो।
0: अब फरसबीन के बात करिए तो 50 से 60 रूपए किलो रहल, मुराय 20 से 30 रूपए किलो, धनिया पत्ता 100 से 120 रूपए प्रति किलो और आदि 120 से 140 रूपए किलो।
1: और वहीं खीरा रहल 20 से 30 रूपए किलो और टमाटर 25 से 30 रूपए किलो, लाल साग और पालक साग जो रहल 20 से 25 रूपए किलो।
0: एक बात बता दियन किसान भाई बहन के आज के मौसम के बारे में, तो आज के जो तापमान रहल ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस,
1: और आर्द्रता आज के रहल 35%। और कल के जे मौसम रहे के एक आशा है ज्यादा से ज्यादा वह है 40 डिग्री सेल्सियस, और कम से कम रहे के आशा है 30 डिग्री सेल्सियस।
0: तो देखा कि भाई मौसम भी ऐसे आज नहीं यार कल हो रहा तो बहुत ज्यादा है, अगर में बदलाव हुए की संभावना न हो।
1: और देखला अब हम इन कार्यक्रम में सुनाऊ है एगो लोकगीत।
0: हाँ,

शब्द है प्रधान जगत में, लाल बिहारी सत सुना दिल का। हो गया उदंड का है, हो गया उदंड का है सूद।

0: तो गीत के बाद अब है फिर चलो ये जानकारी देने भाई की। देखा अब धैर्य से बात जोर देवल जा रहा है प्राकृतिक खेती के देने कि प्राकृतिक खेती है से हम इनके किसान भाई बहन के लिए कैसे फायदेमंद है और कैसे है से हम इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है एक बारे में
1: और एक से है कि पर्यावरण भी हम इन बचा सको ही है काहे कि प्राकृतिक खेती देखला कि एक तरह से कहला कि एक जीरो बजट के खेती भी
0: हाँ,
1: कर सको
0: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल
1: काहे कि प्राकृतिक खेती के मतलब यही है कि भाई जे पशुपालन और खेती जेकरा हम इन एक दूसर के पूरक मान ही है
0: हाँ।
1: तो इन दोनों चीज से हम इन एक दूसर के काम पूरा कर सको ही है।
0: बिल्कुल एकर में है कि हम इनके बाहर से कोई तरह के चीज है से उपयोग में न लाना खास करके कीटनाशी और उर्वरक रासायनिक जो खाद हम इस्तेमाल करो वो चीज हम इनके एकर में खेत में प्रयोग ना करना बिल्कुल प्राकृतिक विधि से यानी कि जो हम इनके पास खाद
1: हाँ
0: है
1: हाँ।
0: गोबर खाद
1: ओकर
0: हाँ। इस्तेमाल करना हो संगे संगे हम इनके खेत में बहुत तरह के ढांचा हम इन जो लगवो ही
1: हाँ हाँ।
0: खाद के रूप में कैसे परिवर्तित कर दिए 45 दिन के बाद
1: वो
0: अगर हो गलो तो तुहरा ढांचा अगर तू इस्तेमाल कर दिला खेत में तो

0: तो हर यूरिया के ऐसे होकर में पूरा हो जाए काम
1: एकदम।
0: तो और एकर संगे संगे तोरा गोबर से बहुत तरह की चीज मिलो हो।
1: हाँ,
0: अमृत जीवा अमृत जी बनो है।
1: हाँ, गोमूत्र हो गए, गोमूत्र भी एकर में इस्तेमाल करल जाए है।
0: हाँ, एकर अलावे जो हम इन गोबर से और भी खाद है से बना दहिए बढ़िया, तो केचुआ खाद हो गए, तो केचुआ खाद के भी हम इन एकर में इस्तेमाल करोइए। संगे संगे प्रकृति में एक चीज और बढ़िया चीज देखल जाओ कि एकर में हम इनके जो मिश्रित खेती, एकर में मिश्रित खेती ज्यादा एकर में लाभकारी रहो और फसल चक्र, अगर ये सब चीज के हम इन ध्यान रखिए तो हम इनके प्रकृति खेती बहुत लाभदायी है और लंबा समय तक हम इनके है से खेत बारी उर्वरा शक्ति बनल रहते और हम इनके लिए स्वास्थ्य वर्धक रहते
1: एकदम। और कीटनाशी भी देखला हम इन यही सबसे बना सको ही है कि सिंधवार के पत्ता, अकवन के पत्ता, नीम के पत्ता, जितना भी
0: खैनी पानी,
1: हाँ, जे भी मतलब छगरी पटरू न खाए है,
0: हाँ, हाँ।
1: उस सब पत्ता के हम इन मिला के और बढ़िया से कीटनाशी घर में तैयार
0: कर सको ही है। बिल्कुल, और एकर से हम इनके पर्यावरण के भी कोई तरह के क्षति न रहते और संगे संग इनके मित्र कीट भी एकदम सुरक्षित रहते
1: एकदम।
0: और भी जीव जंतु अति ओकरो लेल है से बहुत एक दूसरे के सामंजस्य बनावे में एकदम संतुलन के काम करते हैं। तो ई खातिर प्रकृतिक खेती के हम इन बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।
1: एकदम सही कला। और हम इन है कि भाई अपन पर्यावरण के सुरक्षित रखबे, अपन खेत में है जे माटी है ओकरा सुरक्षित रखबे, तबे जाके हम इन भी सुरक्षित रहबे।
0: बिल्कुल। तो किसान भाई बहन देखला है कि अब हम इनके कार्यक्रम किसान वाणी से जाय के बेरा हो रहा है, तो हमरा प्रशांत के
1: और हमरा नहमता के अनुमति देथिन जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन ग्रामीण भाई बहन के सभी के स्वागत है कार्यक्रम में और साथे जोहार प्रणाम और हमर साथे हतीन प्रशांत भाई तो तोरो जोहार
1: जोहार जोहार नहमता बहन और कार्यक्रम सुननार सब किसान भाई बहन के और जो खेतीहारी भाई बहन अथी ग्रामीण भाई बहन के सब गोटे के ऐसे कार्यक्रम में स्वागत है सब गोटे के जोहार
0: एकदम। और आज देखला हम इन कार्यक्रम में भाई बात कर पशु से जो संबंधित है कि नवजात जो पशु हो है उकरा में का बीमारी हो सको है और उकर शुरुआती देखभाल हम इन कैसे कर सको ही है।
1: देखा ना माता बहन अभी के एक जान रहा है कि गर्मी के समय हो तो अब धर के समय में हम इनके सचेत रहना हो कि हम इनके जो नवजात पशु है और चाहे दुधारू पशु है ओकर दोनों के देखभाल करना बहुत जरूरी है।
0: एकदम
1: कहे कि अगर दुधारू पशु है अगर वो बीमार पड़ गलो तो दूध के असर छोटा बच्चा के भी करो है नवजात के भी करो है। तो हम इनके है सबसे बड़ा चीज है कि जो दुधारू पशु ओकर पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो। सबसे पहला चीज हो कि अब धर गर्मी के समय है तो सबसे पहला ओकर आवास के सही ढंग से रखना हो ताकि ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे हवा बयार बहु हो लू टाइप के तो ओकर ऐसे लू से बचाव हो जाए। दूसरी बात है कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो ओकरा ऐसे कम से कम 4-5 बजे ओकरा पानी जरूर ताजा पानी पीएल दिए ताकि ठंडा होकर मिजाज रहे सही ठंडा रहे होकर। दूसर बात है कि ओकर ऐसे कम से कम है एक बार नहाना दिन में जरूरी हो और ओकर अलामे हो कि तोरा खाना दो टाइम है से बढ़िया देना बहुत जरूरी हो। संतुलित भोजन के लिए मान ले है कि तू दे रहा हरा चारा दे रहा है ओकर अलावा तू है से तो कुटी चोकर भी दे रहा है सूखा में ओकर अलावा तोरा मिनरल मिक्सर भी देना बहुत जरूरी हो। अगर ज्यादा बड़ा दुधारू पशु हो 10 किलो 12 किलो 15 किलो दूध देवे वाला तो ओकर में 50 ग्राम है से अंधरे 50 ग्राम है संझिया के 2 बजे ओकरा मिनरल मिक्सर देना जरूरी हो
0: एकदम।
1: आ छोट अगर बाछा बाछी हो छोटा छोटा है बछड़ा है तो उस सबके मिनरल थोड़ा थोड़ा ऐसे कम से कम 10 ग्राम ऐसे के देवे से ओकर वृद्धि हुए खून के विकास हुए है। खून अगर बढ़तो मजबूत रहतो हड्डी मजबूत रहतो रोग से लड़े के क्षमता ओकर में रहते दूध के उत्पादन करे के क्षमता बनल रहते तो ई चीज है खान पान ओकर संतुलित रखना बहुत जरूरी हो
0: एकदम। और एक साथे चे की नवजात जे तुरंत जन्मल बच्चा रहो
1: हाँ।
0: ओकरा ध्यान दिए के भाई काका जरूरी हो जाए है काहे की देखला कि ज्यादातर तो समस्या हो जाए दस्त हो गले निमोनिया है
1: हाँ।
0: जे नाभि के संक्रमण हो है
1: हाँ।
0: पेट में कीड़ा के दिक्कत है ई सब हो जाए है तो जब बचाव के लिए का है कि जन्म से 1-2 घंटा के भीतर है सो ओकरा खीस जे की पीला गाढ़ा दूध रहो है ओकरा जरूर पिलाए के चाहिए और नाभि के जे है एंटीसेप्टिक से साफ करे के चाहिए और जे बढ़िया से है कि ओकर देखभाल जरूरी है।
1: बिल्कुल भाई के एंटीसेप्टिक में बेटाडीन देखा कि बहुत बढ़िया चीज है ओकरा से अगर नाभि ऐसे साफ करके ओकरा रखल जाए तो नाभि में संक्रमण होए के संभावना न रहे सब ऐसे पशुपालक भाई बहुत बढ़िया से जानो थी बात। और दूसर बात हो गए कि देखा जब कुछ समय हो जाए 3-4-5 महीना हो जाए जब बाछा ओखिन के है से जे जोंक वाला दवा है वो देना बहुत जरूरी हो भाई कहे के जोंक वाला है से बाछा बाछी के ये सब होते रहतो हर 6-5 महीना पर है से जोंक वाला दवाई देवे से ओखिन के खून के जे एनीमिया हो है खून के कमी न हो तो ओकर में शारीरिक विकास बढ़िया होते और उत्पादन क्षमता ओकर ज्यादा बढ़ते
0: और खाए पिए में रुचि भी बढ़ जाए है घर से
1: हाँ, हाँ।
0: जैसे हो कि मिजाज बढ़िया रहो है तो खाए पिए में रुचि भी हो है
1: हाँ।
0: और मिजाज बढ़िया नहीं रहो है शरीर में कोई तरह के भी अगर तकलीफ रहो है ना तो खाए पिए में मन नहीं लगो है
1: हाँ।
0: और जहाँ खान पियन पर असर पड़ता है तो मतलब कहला कि शरीर आर लाचार हो जाता है।
1: बिल्कुल भाई अब धर के समय देख रहा है कि नवा नवा घास आ रहा हो पानी पड़ रहा होता जानवर हो सब इनके ढोड़ा नाला के पानी पीतो तो ऐसन में है कि उस सब के ढोड़ा नाला के पानी भी ना पियाना हो और हरा चारा ज्यादा लालची होकर खेतों तो पर भी ऐसे छिड़ल शुरू कर देते तो ये अगर है से उस के दस्त ना हुए डायरिया ना हुए ये खतील है उस के भोजन पर विशेष ध्यान देना हो लेकिन के साफ सफाई पर ध्यान देना हो और पानी पर बहुत ध्यान देना हो
0: एकदम। तो देखला कि कार्यक्रम में हमें आगू भी बनल रहे अब धर सुनाओ जरूरी संदेश और साथ ही एक ठो खूबसूरत से गीत सुनाओ है
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

तो देखा रिना मता बहिन अबधर से गीत नाथ अभी हम सुन लिया जरूरी संदेश के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़े लगे जैसा कि अभी उसे जून के महीना शुरू हो गए है। जून के महीना में हम इनके खेती बाड़ी के ऐसे बहुत सा तैयारी करे लगे जैसे कि हम इनके खरपतवार के ऐसे बिल्कुल साफ सफाई कर देना हो, खाली खेती न करना हो। एक में हम इनके देखा मछली पालन भाई सब के तालाब के भी तैयारी शुरू करे लगे है। कहे कि बहुत सा है मौसमी तालाब हम इनके रोह जेकर में ऐसे जोत कोड़ बहुत जरूरी हो जाए। चाहे तो जैसे तू अपन खेत के जोत कोड़ करो है वह तरीके से मौसमी तालाब के भी जोत कोड़ करल जाए ताकि ऐसे ओकरो ऐसे जीवाणु है विनाशकारी नष्ट हो जाए रौद से। और हम इनके खेत भी है वही तरीके से पलटे वाला हर से अगर माटी पलटा जाओ तो ओकरो में खरपतवार भी नष्ट हो जाए और जे नष्ट हानिकारक दीमा की सब हथी खेत में बहुत तरह के जीव हथी जे फसल के नुकसान करो थी वो सब ऐसे नष्ट हो जाए रौद के तेज प्रभाव से। ये खातिर है कि जोत कूद करना बहुत जरूरी हो। संगे संगे हम इनके बागवानी के जब समय हो तो बागवानी

0: के लिए हमें इनके गड्ढा तैयार करना 2 महीना पहले
1: एकदम।
0: तो अब धर ऐसे बागवानी के लिए ऐसे 2x2 अगर फलदार पौधा लगवो थी किसान भाई बहन तो 2x2 के गड्ढा एकदम अभी से तैयार करके रखती ताकि 2 महीना उनका ऐसे गड्ढा के उपचारित होवे के समय मिल जाए।
1: एकदम सही कहला कि भाई गड्ढा कर दिए के बाद क्या कर में रौद लगता है और जे भी जैसे कि गहरा जुताई करे से खेत के फायदा हो है।
0: हाँ।
1: तो यही लेल है कि अगर पौधा जो लगाए हुए के है हम इनके फल बाग लगावे के है तो 2 महीना पहले यही कारण है गड्ढा करके छोड़े के।
0: हाँ।
1: कि ओकर में भी बढ़िया से रौद लगता है जो कीड़ा मकोड़ा है या कोई भी दिमाग का असर कुछ भी है तो खत्म हो जाए।
0: बिल्कुल, तो ये चीज है से किसान भाई बहन जरूर ध्यान देती कि अबधर के समय में गहरी जुताई के समय हो और फल बाग लगवे के अगर है तो वहां पर गड्ढा करे के अबधर ये बेस समय हो
1: एकदम।
0: और आगे जानकारी लेके आ लिए भाई कि पत्ता गोभी की उन्नत खेती है से किसान है से करो थी, बहुत है से युवा किसान थी, बहुत से अनुभवी किसान थी, तो अपन अनुभव साझा करो थी आकाशवाणी के जरिए दूसर किसान भाई बहन तक हम इन पहुंचो हुई अपन रेडियो के माध्यम से
1: एकदम।
0: तो किसान थी प्रमोद कुमार और उनकर से बातचीत कर ले थी नहमता परवीन,
1: सुना ये इकर जानकारी।
0: बिल्कुल
2: किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं कंचनपुर गांव और हमारे साथ है एक किसान प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी नमस्कार।
3: हम प्रमोद कुमार बोल रहे हैं कंचनपुर से। हाँ। हम खेती करते हैं।
2: तो प्रमोद जी देख रहे हैं कि आप पत्ता गोभी की खेती किए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका खेत देखकर। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आप जो इसका नर्सरी करते हैं, गाछी तैयार करते हैं, वो कैसे करते हैं?
3: ये इसका हम लोग जमीन को चाल को उसको बढ़िया से घास पुआल ये सब बिछ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा खाद दे देते हैं DAP और पोटाश देते हैं, उसके बाद में हम लोग उसमें गाछी छोड़ते हैं।
2: अच्छा, बीज कौन सा इस्तेमाल करते हैं?
3: दाना कोई भी दाना कर सकते हैं,
2: अभी
3: ओजस किए हैं सभी।
2: अच्छा,
3: पत्ता गोभी का सब ओजस किए हैं। करेली लगाते हैं हम लोग, जैसे पाली वाला लगाते हैं, यही सब लगाते हैं।
2: अच्छा, तो जैसे देख रहे हैं कि घास भी बहुत ज्यादा है, तो ये घास से निजात पाने के लिए क्या करते हैं?
3: उसको चाल के निकालना पड़ता है।
2: अच्छा,
3: घास को निकाल देना पड़ता है, इसलिए घास को नहीं निकालिएगा तो जितना खाद दीजिएगा सब वही खींच लेगा।
2: मतलब समय समय पर घास निकालते रहते हैं ना। तो जैसे बीज डाले आप नर्सरी करने के लिए, तो बीज डालने से पहले खेत मतलब जितना दूर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो कितना बार वहाँ जुताई करते हैं, खुदाई करते हैं, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए?
3: मिट्टी जो है यही वह है, और मतलब उसको 3-4 बाजी चाल को छोड़ देना पड़ता है, जोत को उसको छोड़ देना पड़ता है, उसका घास पुआर सब मर जाता है, तब उसका फिर चिकन किया जाता है उसके बाद।
2: अच्छा, मतलब जोत के छोड़ देते हैं ताकि घास और जो भी कीड़ा वगैरह अंदर से निकलता है सारा मतलब खत्म हो जाए।
3: उसका जैसे जमीन को रौद लगता है तब तावता है वो। तावने से गाछ जल्दी निकलता है।
2: अच्छा, बीज जैसे आप डाले उसके बाद उसका आगे का ये बताइए कि कब उसकी सिंचाई करते हैं और किस तरह का देख रेख करें, क्योंकि होता क्या है कि मौसम खराब हुआ, अचानक से बारिश हो गई, तो वैसे में जो हमारा गाछी होता है अगर थोड़ा भी निकला होता है तो वो खराब हो जाता है। तो इसकी देखरेख कैसे करते हैं, कब कब सिंचाई करते हैं?
3: नहीं, जिससे गाछी हम लोग किए उस पर कपड़ा झापते हैं, कपड़ा पानी दे दिए, पानी दे के उसके बाद कपड़ा झाप देते हैं
2: जी।
3: कपड़ा झापने से होता है कि जमीन में नमी रहता है और नमी की वजह से जन्म जाएगा, जन्मने के बाद 2-2 पत्ता जब हो जाते निकल जाता है, जब गाछी सब निकल गया तो कपड़ा उठा देते हैं।
2: अच्छा,
3: कपड़ा उठा देने के बाद झरना से पानी दे देते हैं, जब इतना बड़ा 2-2, 3-3 पत्ते हो जाता है तब फिर पानी उसमें पटान करते हैं।
2: अच्छा, और अगर मौसम जैसे खराब होता है, अचानक से बारिश हो जाती है, तो कैसे बचाते हैं फिर?
3: नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है,
2: नहीं।
3: बारिश से कोई दिक्कत नहीं,
2: मतलब पानी जमने वाला जगह पे गाछी नहीं करते?
3: नहीं।
2: अब जैसे कि आप तो नर्सरी के बारे में बता दिए, लेकिन जब इसे रोपते हैं तो कितना बड़ा पौधा हो जाता है तब उसे आप जमीन में लगाते हैं, और लगाने के जो एक तरीका है वो क्या है वो बताइए?
3: जैसे पौधा 3 इंची का लगभग हो जाता है, 3 से 4 इंची तक के पौधा लगाते हैं हम लोग
2: जी।
3: और उसका लगाने का तरीका है कि उसको पहले कम्प्लीट कर लेते हैं, झोरा और चीर के बुकचा मार लेते हैं, उसके बाद एक एक करके रोप ले जाते हैं, 2-2 दाना सल्फेट देके, और शाम को रोपते हैं उसको।
2: अच्छा, तो यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे कि आपका जो झोरा बनाते हैं वो एक झोरा से दूसरे झोरे के बीच में दूरी क्या रहती है?
3: एक फीट का
2: ना। और पौधा से पौधा की दूरी क्या होती है?
3: एक फीट हाँ, 10 इंची का है।
2: अच्छा,
3: 10 इंची का रहता है, मतलब दूरी 10 इंची का बनाया जाता है उसे, जैसे फैलने कर लिए।
2: उसके बाद आप जैसे बोले कि शाम के समय में जो लगाते हैं,
3: हाँ शाम के टाइम में रोपने के कारण इसलिए है कि रात में फिर उसको ठंडा पन मिलता है, और पानी पटा देते हैं तो रात में शोर नया फेंक देता है
2: जी।
3: और जैसे धूप में भी सुबह में रोपिएगा तो धूप पड़ेगा तो मरने का डर रहता है, गाछ खड़ा नहीं रहता है।
2: अच्छा, तो पौधा लगाने के बाद तो पानी तुरंत दे देते हैं?
3: तुरंत देते हैं पानी, साथ साथ पानी देते जाते हैं।
2: उसके बाद कितने दिन बाद फिर उसमें कोड़न की जरूरत पड़ता है, और फिर आगे खाद वगैरह कब कब देते हैं?
3: दो पानी देने के बाद, जैसे रोपने से दो पानी तीन पानी देते हैं, तीन पानी के बाद हल्का हल्का जड़ के पास पूरा खुरपी मारते हैं, और खुरपी मारने के बाद यूरिया हो गया, DAP हो गया, जैम हो गया, पोटास हो गया, ये सब मिला कर, सब मिला कर और हल्का हल्का चर्चर दाना जड़ तक के बगल में देते हैं।
2: अच्छा।
3: और उसके बाद पानी पटाते हैं, तब वो खिल जाता है गाछ।
2: अच्छा।
3: जब और दवा भी मारते हैं, दवा 8 दिन के अंदर अंदर में मारना पड़ता है।
2: अच्छा, मतलब 8 दिन में एक बार दवा मतलब देते हैं ना, तो कौन सा दवा देते हैं?
3: दवा भी एक बोल्ट है वो देते हैं, और एक और दवा करंट कभी कभी चलाते हैं।
2: अच्छा। इसमें पत्ता गोभी में कौन सा बीमारी होने का डर रहता है, कौन सा कीड़ा लगता है?
3: ये इतना बड़ा बड़ा कीड़ा रहता है, मतलब मोटा मोटा हो जाता है,
2: हरा रंग का वो रहता है,
3: काला भी रहता है, हरा भी रहता है, वो सब हो जाता है, गभ्भे में सब घुसता है, इधर बाहर में नहीं रहता, गभ्भे बीच में घुस जाता है।
2: तो इसलिए उससे बचने के लिए मतलब 8-8 दिन में दवा डालते रहना पड़ता है।
3: 8-8 दिन में डालना पड़ता है।
2: अच्छा, तो जैसे पत्ता गोभी आप लगाए, मान लीजिए कि आज उसे रोपे है, तो कितना समय में वो तैयार हो जाता है?
3: 90 दिन ले लेता है।
2: 90 दिन लेता है ना,
3: 90-100 दिन ये लेता है। इसलिए 90 दिन की तैयारी रहता है, मगर आदमी देसी चल जाता है, खींच लेता है लोग, मतलब कि बंधाने में बेचने में, मगर 100 दिन के अंदर 100 दिन में तैयार हो जाता है।
2: मतलब जितना अच्छा वो बंधा हुआ रहेगा उसका कीमत उतना अच्छा मिलेगा। और कितना सिंचाई का जरूरत पड़ जाता है इसमें, कब कब मतलब कितने कितने दिन में पटवन करते हैं?
3: वही 8 दिन, मतलब अभी गर्मी के टाइम में तो 3-4 दिन में सिंचाई देते हैं, और ठंडा के दिन में 10-15 दिन।
2: अच्छा,
3: इस तरह करते हैं उस टाइम।
2: और सिंचाई करने का समय क्या है, मतलब कोई भी समय कर देते हैं या शाम के समय में करते हैं? जैसे अभी गर्मी का दिन है तो ज्यादातर लोग
3: सुबह शाम,
2: और मतलब लगाने से लेके जब तक पत्ता गोभी तैयार नहीं हुआ तब तक इसमें दवाई का जरूरत पड़ता है छिड़काव ना?
3: दवाई का जरूरत पड़ता है, मतलब हफ्ता में एक बार दवा छिटना है।
2: और ये जब आपका माल तैयार हो जाता है पत्ता गोभी, तो इसे कहाँ के बाजार में ले जाते हैं?
3: सब हजारीबाग मंडी में ले जाते हैं।
2: अच्छा, जैसे आप अपने खेतों से निकालते हैं पत्ता गोभी को, फिर मार्केट तक ले जाते हैं, बाजार तक, तो कैसे ले जाते हैं इसे?
3: इसको प्लास्टिक रहता है 15 किलो का, उसमें भी ले जाते हैं और बोरा में भी ले जाते हैं हम लोग। प्लास्टिक वाला जो है से थोड़ा 1 रुपया ज्यादा महंगा बिकता है, और बोरा वाला 1 रुपया कम में बिकता है, इसलिए उसमें रह जाता है 70-80 किलो को भी होता है, और इसमें 15 किलो करके भराया होता है 20 किलो करके।
2: और पत्ता गोभी तो अभी देखिए सब्जी के साथ साथ जो है फास्ट फूड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसकी कीमत तो अच्छी मिल जाती होगी ना?
3: मतलब जैसे मार्केटिंग जैसा हो रहा है वैसे ही बिक्री होता है, 15-16 रुपये।
2: खराब होने पर तो फिर रेट एकदम ही गिर जाता है?
3: खराब हो जाता है, पिल्लू खा जाता है, तो उसका रेट बेकार हो जाएगा, फेंकना पड़ जाता है।
2: मतलब यही है कि पत्ता गोभी अगर अच्छा करना है तो उसमें समय समय पर पूरा एकदम मेहनत चाहिए,
3: समय समय पर दवा चाहिए। अभी पानी 3-4 दिन पर देना पड़ता है, यदि नहीं दीजिएगा तो सब लड़क जाएगा गोभी।
2: तो किसान भाइयों, इनसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से ये खेती करते हैं और इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, समय समय पे दवा का छिड़काव, क्योंकि पत्ता गोभी में जो है कीड़ा लगने का ज्यादा डर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इनसे की हुई ये जो बातचीत है आप लोगों को काफी अच्छी लगेगी। तो प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
0: तो देखा अब धर जानकारी सुन थलिए पत्ता गोभी की खेती के बारे में, अनुभवी किसान हलथी भाई, बहुत बढ़िया से अपन ऐसे खेती बाड़ी करे थलथी, और पत्ता गोभी के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिल थी। उम्मीद है किसान भाई बहन के जरूर एकर से लाभ होते हैं, और सुन करके अच्छा लगल होते हैं। इनकर से बतिया थलती नहमता परवीन। तो जानकारी के बाद अब हम इनके चलल जाए कि किसान भाई बहन अब धर ऐसे खेत के ऐसे उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ा रहा थी और उनका आर कैसे बढ़वे के जुगत करे के चाहिए, एकर बारे में कुछ बात करल जाए।
1: एकदम सही कहला कहे कि जे है अपन खेत के जे माटी के उर्वरा शक्ति बढ़ा के बहुत जरूरी हो गया आज के समय में। तो एकर लेल हम इन का कर सको ये कि सबसे पहले तो हम इनके जैविक खेती के दिन हम इनके बढ़े के है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सब किसान के जागरूक भी हो के चाहिए कर में, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हम इनके गोबर खाद जो पुरान सड़ल गोबर खादा हाँ, वाला रहो है
0: ओकरा
1: इस्तेमाल करे के चाहिए। एकदम सही कहला। और साथे है कि केचुआ खाद जो आजकल हर जगह ट्रेनिंग दिया जाए है ओकर बनावे के, तो केचुआ खाद हम इन इस्तेमाल कर सको हिये। और कीटनाशी के नाम पर जैविक कीटनाशी हम इन बना सको ही है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जगह नीम आस्त्र भी हम इन कह सके हाँ, नीम के बीज से बनो है, नीम के पत्ता से बनो
1: है। एकदम। और अगर बाजार से खरीदे के है तो नीम के जो तेल मिलो है हाँ, ओकरा हम इन रख सको ही है।
0: बिल्कुल। ओकर अलावे कि हम इन घर में बहुत तरह के ऐसे कीटनाशक बना सके हिये, खैनी पानी बना सके हिये, लसुन पानी सब बना सको हिये, और तरह तरह के हम इन जे गाय गोरु सब जानवर न खेती ओकर जे पत्ता जे विषाक्त पत्ता रहो
1: हाँ,
0: ओकरा हम इन सिझा करके ओकर पानी से हम इन्हें से कीटनाशी बना सको हिये, जे न ही हम इनके पर्यावरण के लिए हानिकारक है न हमरिन के लिए हानिकारक है, खाली वो नुकसान करते थे खाली जे हम इनके फसल के नुकसान करे वाला कीट पति है ओकर है से मुंह बांध देते हैं, ओकरा खाए पिए ना देते हैं।
1: एकदम। और एक साथे साथे जे हम इनके फसल चक्र जरूर अपनावे के
0: बहुत जरूरी
1: है। काहे कि देख ला कि बहुत सारा है कि भाई धान के खेत है तो ओकरा में फिर चल आवे वाला समय फिर धाने लगेबे तो ऐसा नहीं हो है
0: हाँ।
1: ओकरा अगर हम इन बदल बदल के लगाइए धान है और बाकी समय में अगर खाली पड़ल खेत है
0: हाँ।
1: तो उस समय में हम इन दलहनी फसल ओकरा में लगा सको ही है। और दलहनी फसल जो है कि उर्वरा शक्ति बढ़ाए ले कितना जरूरी है।
0: तो ये खातिर है कि एक खेत में है से एक तरह के फसल न लगवे चाहिए, ओकर में से फसल बदल बदल करके यानी कि फसल चक्र अपनावे चाहिए, और हमनी के ज्यादा से ज्यादा ऐसे मिश्रित खेती पर ध्यान देवे चाहिए।
1: एकदम।
0: मिश्रित खेती में तरह तरह के हो जाओ, साग सब्जी के अलावा है से एने हमरीन के हो जाए कि मुर्गी पालन भी हो जाओ, मछली पालन हो जाओ, बतख पालन हो जाओ, सब मिला करके समेकित जरा कृषि प्रणाली हाँ, कहल हाँ, जाए अगर एकरा अपनावल जाए तो हमरिन के है से खेती बाड़ी में और कृषि में कोई तरह के नुकसान कहियो न होतो।
1: एकदम सही कहला। और
0: तब देखा कि हम इनके कार्यक्रम में है से अब हम इनके जाए के बेरा हो रहा है न माता बहिन, तो किसान भाई बहन के कहबन कि प्राकृतिक खेती पर है से ध्यान देती और प्राकृतिक खेती में जे अपन घर के जे खाद है कीटनाशी है ओकरा ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करती ताकि लंबा समय तक हम इनके से धरती के उर्वरा शक्ति बनल रहे और फसल ऐसे एकदम स्वस्थ वर्धक हो जगह खा के इंसान भी स्वस्थ रहे।
1: एकदम कहला कि हम इन भी तंदुरुस्त रहे
0: हाँ।
1: हम इनके गाय गोरु भी तंदुरुस्त रहते तब जाके हम इनके जिंदगी है बढ़िया चलते।
0: तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमारा प्रशांत के
1: और हमारा नहमता के अनुमति देते हैं
0: जोहार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति यानी दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद ने जनवितरण दुकानों में लाभुकों को पूरा अनाज देने, सदर अस्पताल में डिजिटल ब्लड प्रेशर तथा एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराने और CHC केंद्रों पर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गढ़वा

0: पुलिस ने सगमा से अगवा एलएनटी कंपनी के कर्मचारी मुरारी तिवारी को अपराधियों के चंगुल से सकुशल मुक्त करा लिया है। एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 7.5 लाख की फिरौती मांगने वाले दो अपराधियों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरांगी में आज एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों टाटीझरिया के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। रामगढ़ पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत विभिन्न मामलों में फरार 15 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने पिछले दो दिनों के दौरान सभी थानों और ओपी क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर कुल 19 वारंटों का निष्पादन किया। पाकुड़ जिले में आज तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी के कारण मालपहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने मलबे को हटाकर आवागमन सुचारू कराया। आपदा में कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गई और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। पेश है युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भारी गर्मी के बीच में कुछ घंटों की बारिश भी सुकून देती है। ऐसा लगता है कि भरी दोपहरिया में वर्षा के कुछ फुहारे आकर चेहरे पर गिरी हूँ। सचमुच यह एहसास आपको भी हुआ होगा, तो आइए सुनते हैं कुछ सुकून भरा गीत।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में
3: दोस्तों अब आइए सुनते हैं एक जानकारी, मीडिया के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाएं, बता रही है रूबीना वारसी, इनसे बातचीत कर रही है श्वेता रानी।
4: देश विदेश से लेकर हमारे आसपास की घटित घटनाओं और जानकारियों को हम तक पहुंचाने में बेहद अहम होती है, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। हम में से कई युवा साथी मीडिया में अपना करियर भी तलाशते हैं, पर सही दिशा और दशा न मिल पाने की वजह से कईयों का सपना अधूरा ही रह जाता है, खासकर छोटे शहरों से आने वाले युवाओं का। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्रतिभाशाली लड़की से मिलवा रही हूं, जिन्होंने छोटे शहर हजारीबाग में ही रहते हुए मीडिया में अपने करियर के सपने में रंग भरने जा रही हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, इनका सिलेक्शन IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी मास मीडिया के क्षेत्र में इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन जो है, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है 2020 में ही। तो सबसे पहले आपको इस सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और ढेर सारी बधाइयां भी।
5: थैंक यू सो मच।
4: तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दें हमारे श्रोताओं।
5: जी, मैं रूबीना वारसी हूँ। मेरी पैदाइश हजारीबाग में हुई है और मेरी जितनी भी पढ़ाई है, स्कूलिंग है और ग्रेजुएशन है, वो मैंने अपने ही शहर हजारीबाग से पूरा किया है। और ये मेरा पहला कोर्स होगा, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, जो मैं अपने झारखंड से बाहर कर रही हूँ, यानी कि दिल्ली से।
4: मास मीडिया में आपका जो झुकाव है, वो कब से आपके मन में आया, कैसे आया?
5: ये झुकाव, ये जो रुझान है, वो मैं कह सकती हूँ ये इंटर प्लस टू हायर एजुकेशन कम्प्लीट करने के बाद हुआ। असल में हुआ यह था कि मैं नॉर्मल BA BCOM ऐसा कोर्स कभी करना ही नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ करूं जिसे मैं एक्सप्लोर कर सकूं कुछ नई चीजों को, और जो मेरे पास हो उससे मैं हमेशा वाकिफ रहूं, मुझे जानने को मिलता रहे। तो मुझे लगा कि वो मास कम्युनिकेशन से अच्छा कोई फील्ड नहीं होगा, ताकि जो कुछ भी नया होगा वो मैं पहले जानूंगी और मेरे थ्रू कोई बड़ा मास जानेगा। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी कि मुझे ये फील्ड चूज करना चाहिए, ताकि मैं खुद तो इसके बारे में नॉलेज ले सकूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्या नई चीजें आई हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी उस चीज से जागरूक कर सकूं।
4: मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स है, वो आपने डिग्री मार्कम कॉलेज से लिया, उस दौरान आपको क्या कुछ जानने सीखने को मिला?
5: मास कम्युनिकेशन मेरे लिए जब मैंने चूज किया, तो मुझे सिर्फ पता था कि ये मीडिया का कोर्स है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके अंदर क्या क्या आती है, जैसे मीडिया एथिक्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, इनके हिस्ट्री हो गए। तो बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि मीडिया की भूमिका आजादी के वक्त क्या रही, मीडिया की भूमिका अब क्या है, येलो जर्नलिज्म, फेक जर्नलिज्म, इन जैसे है कि आपको कैसे एक अच्छा पत्रकार होना चाहिए, एक पत्रकार की भूमिका क्या होती है, वो कैसे गेट कीपर की तरह काम करता है, ये चीज जानने को मिला। न्यूज फैलाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन एक सही खबर फैलाना ये मुश्किल होता है, जो कि एक पत्रकार का काम होता है। और हमने यही चीज मार्कम कॉलेज में, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, ये पढ़ाई की।
4: आपने कहा कि मीडिया की जो भूमिका होती है समाज में, जो घटित खबरें हैं उसको उजागर करने की, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेज भी होते हैं जिसे फेस करना बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी, आप इसके लिए कितना प्रिपेयर मानती हैं खुद को?
5: अभी इस दौर में यहाँ पे एक अपना पहचान बनाना वाकई में काफी मुश्किल है, कई मुश्किलें आती हैं, क्योंकि मीडिया को अब वो नजरिया से नहीं देखा जाता है जो आजादी के वक्त मीडिया की भूमिका पे होता था। तब तो न्यूज़पेपर बहुत कम होता था, और अब है कि ये तो दैनिक है, तब तो वीकली छपा करता था। तो अभी ज्यादा चैलेंजेस बढ़ गए हैं, लेकिन अगर आप सटीक रूप से जो खबर है वो आपने जनता तक पहुंचाते हैं, जनता आपसे सेटिस्फाई होते हैं कि आपने क्या दिया है उनको, तो ये काम मुश्किल से आसान हो जाता है। तो बस यही है कि जो आप अपने पाठक को या फिर अपने लिसनर व्यूअर्स को जो आप दे रहे हैं, जो पहुंचा रहे हैं, वो उनके हित में हो, तभी ये ऐसे मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है।
4: चौथा
5: स्तंभ होने के कारण मीडिया की जो भूमिका होती है, जिम्मेदारी या जवाबदेही दोनों बढ़ जाती है। तो ऐसे में है कि न्यूज को पहुंचाना बहुत जरूरी है और एक सेंसिटिव भी है, हमें वही चीज पहुंचाना चाहिए जो सही हो। तो हाँ, चुनौतियां तो बहुत आएंगी क्योंकि न्यूज जो है वो बहुत है, लेकिन उसको कैसे पहुंचाना है वो हमारे ऊपर है। तो एक सही पत्रकार होकर के मैं चाहती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करूँ, और न कि मैं फेक न्यूज फैलाऊँ, एक अच्छी न्यूज फैलाऊँ जो हमारे समाज में, सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करे।
4: बहुत अच्छी सोच है आपकी, और हम दुआ करेंगे कि आप इसी सोच के साथ अपने करियर में खूब आगे जाएं, ढेर सारा नाम भी कमाएं। हम नाम कमाने से लेकर के हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि मीडिया ग्लैमर से भी जुड़ गया है, तो इसमें नेम और फेम और साथ ही साथ मनी तीनों का ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो आप किस तरह के इसमें करियर को देखती हैं?
5: हाँ, मीडिया में है कि नेम, फेम और मनी सब है, लेकिन एक वो एक सर्टेन मिल नहीं जाता है, उसके लिए टाइम की जरूरत होती है।
4: टाइम की जरूरत होती है, स्ट्रगल बहुत करना होता
5: है, स्ट्रगल की जरूरत होती है। तो हाँ, शायद मैं अपने आप को उस जगह पे देखूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरी जर्नी है वो अभी तो बहुत मुझे स्टेप चढ़ना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में सीट क्लियर करना, ये समझ लीजिए कि आसमान की ओर चढ़ने का ये मेरा पहला स्टेप है। तो शायद मैं अपने आप को उस जगह में देखूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि उस जगह में देखने के लिए मुझे हमेशा मेहनत मैं करूं, अपने आप को उस ओर पुशअप करूं, ताकि मैं वहां पे जाऊं तो अपनी मेहनत से जाऊं, एक काबिलियत से जाऊं।
4: हम आप इस लौटना चाहेंगे आपके मार्कम कॉलेज के कोर्स करते टाइम जो आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया और जो आपने पढ़ाई की। बहुत सारी बातें आपने बताई कि आपने मार्कम कॉलेज में पढ़ते वक्त काफी कुछ आपने यहाँ पे जाना सीखा। हम जानना चाहेंगे कि बैचलर डिग्री की आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें कितने सारे पेपर्स थे? बैचलर्स डिग्री में 3 साल का कोर्स होता है, तो 3 साल के कोर्स में आपको किस किस तरह के बुक्स थे वो आपके पढ़ने पड़े?
5: बुक्स तो ज्यादा कुछ नहीं, एक मेरे इंग्लिश का था और एक हिंदी का था, वो दो मैं रखती थी, जिसमें की है इंटरव्यू कैसे लेते हैं, मीडिया का हिस्ट्री क्या है, राइटिंग स्किल कैसे बैठाते हैं, एडिट कैसे करते हैं, ये सब था। बाकी जितने भी नोट्स वगैरह थे वो हमें डिपार्टमेंट की ओर से ही प्रोवाइड किए जाते थे। हमारे जो सर हैं वो हमें सारा कुछ वहाँ पे जानकारी देते थे थ्योरिकल। 3 साल का ये कोर्स था जिसमें 6 सेमेस्टर बटा हुआ था। तो पहले तो हमने मीडिया के बारे में जाना, इसका इंट्रोडक्शन लिया कि आखिर न्यूज है क्या, न्यूज कैसे लिखते हैं, न्यूज में क्या है, जैसे इन्वर्टेड पिरामिड हो गया, 5W1H हो गया, तो हमने यही जाना कि न्यूज कैसे लिखते हैं, उसे एडिट कैसे कहते हैं, एक सही पत्रकार की भूमिका क्या होती है, आचार संहिता क्या होता है और उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही क्या होती है, पत्रकारों के और मीडिया के क्या क्या अधिकार दे रखे हैं संविधान ने, तो हमने ये जाना।
4: मीडिया लाइन में अपना करियर बनाने के लिए हमारे अंदर किस किस तरह के क्वालिटीज होने आवश्यक है?
5: मीडिया लाइन में करियर बनाने के लिए तो पहले है न्यूज के प्रति आपका रुझान काफी होना चाहिए, क्योंकि हम न्यूज से ही घिरे हुए रहते हैं मीडिया में। अगर न्यूज के प्रति रुझान नहीं होगा तो इसमें करियर बनाना काफी मुश्किल है। और हमेशा अपडेट रहना चाहिए, आपके आसपास क्या हो रही है, क्या घट रही है, वो आपको हमेशा मालूम रहना चाहिए। वो कहते हैं ना 5 सेंस, तो ये 5 सेंस का इस्तेमाल करते रहना चाहिए।
4: अब हम आपके IIMC में सिलेक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ सिलेक्शन आपका किस तरह से संभव हो पाया, इस बारे में बताएं।
5: मेरा जो बैचलर था वो 2019 में कम्प्लीट हुआ था, लेकिन मैंने उस वक्त हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि कुछ फाइनेंशियल वहाँ पे ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक साल ड्रॉप करती हूँ और ऐसा कुछ तैयारी करती हूँ जहाँ पे मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकूँ। तो 1 साल तक मैंने क्लास लेती थी 1 साल के बीच में स्कूल्स में, उसके बाद मैंने IIMC का फॉर्म भरा, उसके CUCET का फॉर्म भरा, तो CUCET में मेरा पंजाब में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन IIMC अभी इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो मुझे पता
4: CUCET क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा।
5: CUCET एक एग्जाम है, जैसे कि सेंट्रल इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें होता यह है कि 10 या फिर 15 यूनिवर्सिटीज एक अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाती है, और आपको जिस फील्ड में जाना है वो आप अपना कोर्स चूज कर सकते हैं, और आपके पास 3 ऑप्शन रहता है फॉर्म भरते वक्त। अगर आपका आप एलिजिबल हैं तो आपको मौका मिलेगा ये 3 यूनिवर्सिटी में जो आपने चूज किया है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने भी ये भरा था, IIMC भी था, लेकिन मुझे शायद था कि अगर मैं क्लियर कर पाऊँ IIMC का सीट या ना कर पाऊँ तो मेरा कहीं और सीट सिक्योर रहेगा। तो CUCET का फॉर्म भरना था एक तरह से कि अपना सीट को सिक्योर करने के लिए मैंने फॉर्म भरा था। तो CUCET एग्जाम देने के बाद मेरा पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में सिलेक्शन हुआ, और मैं वहाँ पे शायद एडमिशन ले लेती, लेकिन इसी बीच मुझे पता चला कि मेरा जो सिलेक्शन है वो IIMC में हो चुका है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, और मुझे यकीन भी नहीं था क्योंकि IIMC में सीट क्लियर करना बहुत टफ है, और मेरा सिलेक्शन हो चुका है वहाँ पे। तो पहले तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में फोन लगा के इसकी जानकारी दी कि वहाँ पे एक सीट जो है वो मेरे नाम का है। तो सर ने बोला कि बहुत अच्छा है, तुम वहाँ पे वो एडमिशन ले लो, क्योंकि कि IIMC एक ब्रांड है।
4: बिल्कुल,
5: मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, वहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है और 1 दिसंबर से मेरे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं और बिकॉज ऑफ कोविड जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही चलेंगे।
4: रुबीना जी, आपने IIMC जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट का मीडिया इंस्टीट्यूशन है उसका आपने एंट्रेंस दिया, आपने क्वालिफाई भी किया, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से उसकी तैयारी की है।
5: जी, इसका मैंने एग्जाम ऑनलाइन दिया था लेकिन IIMC कभी अपना जो टेस्ट है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाता नहीं है। ये फर्स्ट टाइम था कि IIMC ने अपना जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया NTA के जरिए, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी के जरिए। लेकिन ये जो ऑफलाइन कंडक्ट करवाती है एग्जाम, तो ये हमेशा थ्योरिकल करवाती है, यानी कि MCQ टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। इसमें हमेशा थ्योरिकल आता है और ये विचार जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स के, कि स्टूडेंट्स नए नए टॉपिक के बारे में या फिर जो टॉपिक अभी हॉट टॉपिक है उसके बारे में क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स को राइटिंग स्किल आती है या नहीं, न्यूज की हेडलाइन बनानी आती है या नहीं, ये वो जानना चाहते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने IIMC ने ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जिसमें उन्होंने 50 MCQ पूछे थे। लेकिन हम लोगों ने एक साल से, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैं तो एक साल से IIMC का थ्योरिकल ही एग्जाम का तैयारी करती थी क्योंकि हमें तब पता नहीं था कि ये कोरोना आएगा और इसके वजह से ऑनलाइन एग्जाम भी होंगे, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में IIMC की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है ऑनलाइन एग्जाम। तो मेरा तो था, मैं थ्योरिकल ही करती थी, न्यूज राइटिंग का प्रैक्टिस करती थी, नए नए टॉपिक पे उसमें लिखने की कोशिश करती थी, मेरा जो विचार है उस टॉपिक पे वो मैं खुद से लिखने की कोशिश करती थी और जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर तो होंगे ही, वो हर एग्जाम में होते हैं, तो कुछ सिनेमा पे थे, कुछ हिस्ट्री में थे, कुछ हमें एडिटर्स के नाम पूछे गए, फेमस न्यूज़पेपर दिए गए उनके नाम पूछे गए, कुछ एथिकल थे, कुछ मीडिया हिस्ट्री से रिलेटेड थे, ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन सेट किए थे।
4: तो इन क्षेत्रों

0: इतने भी जो रहते हैं करंट अफेयर है, कैसे तैयारी करना है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, वो सारा कुछ उन्होंने वो उसी में जितने भी मटेरियल से वो ग्रुप में डालते थे। और हमें कुछ डाउट रहता था, हमें कुछ समझ में नहीं आता था, तो हम ग्रुप के जरिए ही उन लोगों से सवाल करते थे और वो हमारी डाउट है वो क्लियर करते थे।
1: लैंग्वेजेज की अगर हम बात करें तो मीडिया में दो लैंग्वेज पे कमांड होना काफी जरूरी होता है, वो है हिंदी इंग्लिश। तो जो बच्चे इसमें करियर बनाना चाहते हैं मीडिया में, लेकिन चूंकि हमारे छोटे शहरों में इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों में बोलचाल है, पढ़ने में भी काफी मतलब दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सारे बच्चे लगभग हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उन्हें आप किस तरह का सलाह देना चाहेंगे?
0: ऐसे भी अगर मैं मास कम्युनिकेशन से अगर हट के बात करूं तो हमें दोनों में कमांड होना बहुत जरूरी है। और हाँ, मैं ये चीज मानती हूँ कि एक छोटे शहर से होने से हमें जो हमारा रीजनल लैंग्वेज होता है उसमें हमारी कमांड ज्यादा होती है कम्पेयर टू द इंग्लिश। लेकिन ये है कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, ना कि नॉलेज है। तो लेकिन आपको इसमें भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हजारीबाग या फिर कोई भी छोटे जगह से बाहर निकलेंगे आपको इंग्लिश का सामना तो करना ही पड़ेगा।
1: चलते चलते आप हमारे वैसे साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
0: मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि अगर ठान लिया जाए कि मुझे ये काम करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर मैंने ठान लिया था कि मुझे मास कम्युनिकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना है, बैचलर करने के बाद शायद मेरा डायरेक्शन वो चेंज भी हो सकता था, लेकिन मेरा हमेशा फोकस था कि एक साल ड्रॉप किया है लेकिन अगले साल जाऊंगी तो यही फील्ड में जाऊंगी, ना कि किसी और कोर्स में लग जाऊंगी। मेरा फोकस हमेशा से सेम था, बैचलर इसमें हुआ है तो पीजी का जितने भी कोर्स है वो इसी में होगा, ध्यान मेरा नहीं भटकेगा, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन के प्रति मेरा रुझान काफी ज्यादा है। तो अगर जो स्टूडेंट जिनका रुझान वाकई में किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो या फिर उनका कोई अलग कोर्स है, उनके लिए रुझान ज्यादा है, तो मैं चाहूंगी कि हाँ वो उस चीज के लिए लग जाए। एक साल टाइम लगेगा, दो साल टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका फोकस सटीक है, फोकस है उस पे, तो हाँ आपको वो चीज मिल जाएगा।
1: तो रुबीना जी, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया और आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मीडिया के क्षेत्र में कैरियर, जानकारी दे रही थी रुबीना वारसी और इनसे बातचीत कर रही थी श्वेता रानी।
3: आकाशवाणी हजारीबाग के प्यारे श्रोताओं को राजेश दुगल का नमस्कार।

0: फिर बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।
1: सुनिएगा मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहब पर केंद्रित फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम वो भूली दास्तां, शनिवार 6 जून 2026 को सुबह 10 बजे और इसी कार्यक्रम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे रात 10 बजे।

0: ये इयर रिंग दिखाना
1: गया तेरा प्राइस मनी।
0: कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती,
2: आते समय कर लिया मोबाइल से।
0: कहाँ?
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में।
0: हाँ,
2: RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पर गारंटीड रिटर्न्स।
0: नो ब्रोकरेज,
3: नो हिडन फीस।
0: मान गए,

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवा अपनी ऊर्जा, जागरूकता और नई सोच से पर्यावरण को बचाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना तथा कपड़े या जूट के थैले का उपयोग करना, जल संरक्षण करना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना। दोस्तों, बिजली की बचत करना बहुत ही जरूरी है। अनावश्यक लाइट और पंखे बंद कर दें तथा सोलर एनर्जी का उपयोग करें। स्वच्छता अभियान में भाग लें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। कचरे का सही प्रबंधन करना तथा गीले और सूखे कचरे को अलग करना चाहिए। साइकिल या पैदल चलने या फिर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, युवा यदि पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझे और छोटे छोटे कदम उठाएं, तो वे स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त आ गया है, तो चलते चलते हम सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवानी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 114.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: एक बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।
1: सुनिएगा मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहब पर केंद्रित फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम वो भूली दास्तां, शनिवार 6 जून 2026 को सुबह 10 बजे और इसी कार्यक्रम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे रात 10 बजे।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से।
1: सिरालत
2: और ई कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।
1: तो सुनो या भाई बहन, मैंने अब रावण के संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
2: विष्णु के देव विदा जोहार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण हमारी दुनिया, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा, 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान।

0: और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दलों कांग्रेस, झामुमो और राजद ने अपनी सांगठनिक बैठकें तेज कर दी हैं। रांची के पुराने विधानसभा सभागार में आज संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बैठक में देरी से आने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों और गठबंधन की रणनीति को लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह गंभीर है।
1: हमारा हाईकमांड बात कर रहे हैं, आरजेडी और लेफ्ट से बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हमारा हाईकमांड को बताएंगे। अभी तक प्रायोरिटी नहीं है, अभी तक वो ऐसा अश्योरेंस नहीं आया। हमारा अश्योरेंस ये है एक सीट में हम लड़ेंगे, सो हम वेट कर रहे हैं।
0: इस बीच झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन में अभी काफी समय है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल पूरी तरह एकजुट हैं और सही समय पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे।
2: सारे राजनीतिक दल सारी गोटियों पर, संभावनाओं पर, सारे मूल्यांकनों को करके यह तय करते हैं कि किसको कैंडिडेचर देना चाहिए, किसको बढ़ाया जाना चाहिए और उसका समय उनको दिया जाना चाहिए। 8 तारीख में भी समय बाकी है, तमाम चीजें होंगी, ससमय होंगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन झारखंड की दोनों ही सीटें लेकर जाए।
0: इधर रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य भर में संगठन को मजबूत करने के लिए जिलावार दौरे की रणनीति तैयार की गई है।
3: पूरे राज्य का हम लोग का दौरा चल रहा है अगले महीना से। अध्यक्ष जी के माध्यम से पार्टी का लाइव मशवरा हुआ, उन्होंने तीनों विधायक को भी डायरेक्शन दिया। लोग अब पूरा राज्य में भ्रमण कैसे करें, अपने लोगों को, संगठन को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाएं, उसके विषय में डायरेक्शन दिया।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगामी 6 जून के रांची दौरे के आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि इस दौरे से राज्य में पार्टी के आगामी अभियानों और सांगठनिक विस्तार को नई मजबूती मिलेगी।
4: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 6 और 7 को रांची में आगमन हो रहा है और विशुद्ध रूप से वो झारखंड को बहुत बारीकी से जानते हैं। इस क्षेत्र में लगातार उनका संपर्क, चुनाव के समय में भी इनका यहाँ पर आकर के चुनावी काम में सहयोग करना रहा है और एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं, यहाँ के पार्टी के संगठन को भी बहुत वास्तविकता से जानते हैं।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही रोजगार उन्मुखी योजनाओं और युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। श्री सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि कौशल विकास कार्यक्रमों को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप बनाया जाए। लातेहार के मनिका में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब मरीज अस्पतालों में दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई लाखों रुपए की दवाइयां जंगलों में फेंकी जा रही है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में आज दिशा की बैठक हुई। उन्होंने जनवितरण दुकानों में पूरा अनाज देने, सदर अस्पताल में डिजिटल बीपी व एक्सरे मशीन लगाने और सीएचसी में दवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने सड़कों की गुणवत्ता और प्रभावितों को शुद्ध पेयजल देने को भी कहा। धनबाद रेल मंडल के राजहरा स्टेशन के पास कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे से अपलाइन पर

0: परिचालन ठप है। इसके कारण रांची सासाराम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है और राजधानी सहित कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। ट्रैक साफ करने का कार्य जारी है। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरेंद्र कुमार मौर्य ने आज गुड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां बन रहा वॉशिंग पिट एक महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे गुड्डा से लंबी दूरी की नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकेगा।
1: कोचिंग मेंटेनेंस के लिए काम तो काफी प्रगति पर है, कुछ काम उसमें रह गया है, तो आई होप कि एक महीने में फिट बन जाएगा। और ये डिपो के ऑफिस वगैरह भी रेडी हो जाएंगे, इसमें भी छोटे मोटे काम रह गए हैं। इलेक्ट्रिकल के दो ट्रेन जो यहाँ से चलती है मेंटेनेंस के लिए भागलपुर जाती है, वो दोनों ट्रेन का मेंटेनेंस हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे।
0: और अब मौसम का हाल। दक्षिणी पश्चिम मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुँच चुका है, जिसके बाद 15 जून तक झारखण्ड आने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 8 जून तक वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में डाल्टनगंज का तापमान सर्वाधिक 41 डिग्री रहा, जबकि गुमला में सबसे अधिक 9.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर पाकुड़ जिले में आज तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी के कारण माल पहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। आपदा में कई कच्चे मकानों की छत उड़ गई और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। तेज आंधी और बारिश के दौरान हुए वज्रपात से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के बाइथल स्पर्धा में प्रेम किशोर महतो ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं दीपांशु सिंह और अतासी कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। ट्राइथल स्पर्धा में आरती कच्छप ने रजत और प्रेम किशोर महतो ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। झारखंड महिला प्रीमियर लीग में पलामू वॉरियर्स ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 3 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छोटा नागपुर ब्लास्टर्स ने कप्तान शशि माथुर के 35 रनों की मदद से 145 रन बनाए। जवाब में पलामू वॉरियर्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवरों में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस, झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा, 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने दुमका परिसदन में दुमका और जामताड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा उनसे जुड़ी शिकायतों एवं समस्याओं पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में जामताड़ा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नहीं पहुँचने पर उन्होंने गंभीर नाराजगी जताई और कहा कि दोनों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा। दरअसल अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के नाते आशा लकड़ा को जामताड़ा के लोगों से यह शिकायत मिली थी कि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। लोगों ने जमीन खाली कराने की मांग की थी।
2: जामताड़ा के लोगों से हम एक विश्वास के साथ जनजाति समुदाय आयोग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनको विश्वास है कि आयोग न्याय देगी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि आयोग का नोटिस आने के बाद भी जामताड़ा का डीसी और एसपी उपस्थित नहीं हुए। ये बहुत विडंबना है। आयोग उन पर समन करेगी और दिल्ली बुलाएगी और जामताड़ा का जनजाति समुदाय को न्याय देने का काम करेगी, क्योंकि जामताड़ा में जिस जगह पर जो आदिवासी समुदाय का जहर थान है, पूजा स्थल है, उस जगह पर आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग अपना कब्रस्थान बना रहे हैं और उस कब्रस्थान में काम चल रहा है। इसको रोकने का प्रयास करने के लिए भी पिछले बार हमने कहा था, थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, लेकिन पुनः फिर से वहाँ व्यक्ति दफनाया जा रहा है।
1: दुमका जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। युवा विभिन्न ट्रेड में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर हुनरमंद बन रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। योजना के कार्यान्वयन से जुड़े कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के संचालक ब्रजेश भारती बताते हैं कि
3: बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 120 दिनों का प्रत्येक दिन 3 घंटे का प्रशिक्षण होता है और इसमें बच्चों को हम लोग असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसको करने के बाद बच्चों के पास स्किल इंडिया का तो सर्टिफिकेट होगा ही और कंप्यूटर का ज्ञान लेने के बाद वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।
1: दुमका जिले में आदिवासी समाज की उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवतियां जनजातीय समाज की महिलाओं के जीवन स्तर और उनकी आर्थिक दशा में बदलाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की महत्वपूर्ण कड़ी बन रही हैं। कंप्यूटर में उच्च शिक्षा प्राप्त सोनाली सोरेन कहती हैं कि
4: यहाँ पे जितनी भी आदिवासी महिला है यहाँ पे गाँव सुदूर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये लोग बहुत ही संकोची और ये भोलापन के निशान ये लोग निशानी होते हैं और ये लोग तुरंत से कुछ भी आगे नहीं जाना चाहते हैं। और मेरा ये मोटिव है कि मैं लोगों को आगे लेकर जाऊं और हमारे जनजातीय कौशल केंद्र के द्वारा जितनी भी ट्रेनिंग कराया जा रहा है वो लोग उसमें बढ़ के भाग ले।
1: दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकी नाथ धाम श्रावणी मेला महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मेले में आने वाले कांवरियों को सेवा सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: आप सुन रहे थे जिले में आजकल।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश FM संगीत का कार्यक्रम झनकार।

0: एक बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।
1: सुनिएगा मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहब पर केंद्रित फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम वो भूली दास्तां, शनिवार 6 जून 2026 को सुबह 10 बजे और इसी कार्यक्रम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे रात 10 बजे।

भूपिंदर सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना और इसी के साथ कार्यक्रम छनकार समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 हुए हैं। पेश है प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स।

0: एक बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।
1: सुनिएगा मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहब पर केंद्रित फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम वो भूली दास्तां, शनिवार 6 जून 2026 को सुबह 10 बजे और इसी कार्यक्रम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे रात 10 बजे।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू को। अब आई कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनाते हैं याराना फिल्म से ये गीत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। पेश कार्यक्रम आपकी चाहत। आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आज हमने पहला गीत लिया है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसकी फरमाइश की है सीताराम मालाकार, वासुदेव मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, पूनम कुमारी, नूतन कुमारी, कुसुम और आर्यन, आप सभी हैं जीटी रोड बरही से। मोहम्मद गुलाम अली और मोहम्मद सलदाम अली, तो आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: इससे क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।
1: सुनिएगा मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहब पर केंद्रित फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम वो भूली दास्तां, शनिवार 6 जून 2026 को सुबह 10 बजे और इसी कार्यक्रम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे रात 10 बजे।

दोस्तों, इसी गाने के साथ कार्यक्रम आपकी चाहत से ममता को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।

0: वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रही हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
3: जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहते

0: क्योंकि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
0: जी,
1: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नजर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
0: जी,
1: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूं कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं।
0: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
0: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
0: जी।
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
1: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
0: जी,
1: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
0: जी।
1: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं, ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से, कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शियरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है, और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए, तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7% less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयो वंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया।
0: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
0: जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने भर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खासतौर पर जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे, पूरे के

0: तैयारियां हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे दो बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं, उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पाल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों के, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में, 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इसमें 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें 2 तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतनी संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ, सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेली मेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाए, और जो बाकी सेवाएं शुरू से, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल, लेप्रेसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चलने ही है।

0: में भी ताकत है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को अपना लाइफ स्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएम से जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में अपन पे हुआ सिस्टम है, इन सब की जो योग कोई स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सबको एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलकर एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बड़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बड़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जिसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: वो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में, इस पिछले 12-13 साल में एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पर बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का, मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम

0: चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता करी है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य आईडी जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप है उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है। 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसी फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशन में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। वन ऑफ द की इश्यूज व्हिच हैज बीन बॉदरिंग ऑल ऑफ अस वाज स्टंटिंग इन चिल्ड्रन, एंड स्टंटिंग हैज बीन ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड एज द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एंड ड्यूरिंग लास्ट बिटवीन NFHS 5 एंड 6, आई थिंक द स्टंटिंग हैज डिक्रीज बाय 12 or 14% points। दिस इज रिमार्केबल बिकॉज दिस इज, जिसको कहते हैं बिल्कुल फंसी हुई चीज थी, जिसको ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो बढ़कर के लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टेलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो पूर्वोत्तर विकास हुआ है उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया, उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सबसे सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमी का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच कराया गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया है। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सूएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को, पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है। और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
2: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी,
2: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं, ये सब जगह सब प्रदेशों में सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहे हैं, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचारों के प्रसारण के लिए अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित

0: रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके।

0: हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrindra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
8: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector and pharmaceuticals to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
7: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. Union Home Minister Amit Shah today said the Narendra Modi government entered the era of violence in the Northeast and transformed the region from a hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council or NEC, Mr. Shah in a social media post said today that NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture. In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said that yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the Ekta Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said that yoga unites the mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world.
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी
7: We have a report.
6: The Ekta Arena in Ahmedabad has opened its door to more than 400 participants from 60 nations, including international contingents from USA, Ghana, Kenya and Malaysia. Host nation India is fielding a strong 122-member squad competing across six age categories from sub-juniors to senior masters. In a global first for the sport, an advanced electronic scoring system has been introduced to ensure absolute transparency in judging every posture, balance and flow. This championship signifies a major transformation for Yogasana, elevating it from a discipline of spiritual wellness into a highly technical, competitive sporting event aimed at Olympic movement. Aparna Khon, Akashwani News, Ahmedabad.
7: Defence Minister Rajnath Singh today approved a two-fold increase in financial ceiling for field commanders to strengthen operational efficiency in New Delhi. He also released the revised delegation of financial powers for the defence services, including medical and works projects. The Ministry of Defence said the revised delegation of financial powers will facilitate procurement of more than 1,25,000 crore rupees through the revenue route, in line with the current year's budgetary allocations. Union Public Service Commission has developed face authentication protocol in its endeavour to enhance the integrity of the examination process and prevent impersonation. The Commission successfully implemented face authentication during recently held Civil Services and Indian Forest Service Preliminary Examination 2026. The system enabled live, real-time authentication of candidates at exam venues through mobile phone-based verification by invigilators, ensuring seamless identification and eliminating the possibility of impersonation and malpractice. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said that India has made extraordinary strides in renewable energy, emerging as one of the world's top producers of non-fossil fuel capacity. The minister made these remarks on the event of 2 years of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, scaling the solar home to 1 crore rooftops in New Delhi. He said the main reason for the success of the scheme is that citizens of the country have understood that they can generate their own electricity on rooftops and the electricity bill can become zero. The Ministry of Parliamentary Affairs and West Bengal Legislative Assembly today signed an MOU for the implementation of National E-Vidhan Application or NEVA in West Bengal Assembly at Parliament in New Delhi. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju termed the integration of the West Bengal Assembly into NEVA as historic. He said that all assemblies and parliament of the country have now come onto a single platform.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नूतन समर्थ बहल, जी हां नूतन। इनका जन्म शुभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 के 4 जून को हुआ। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थी। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे, तो माता शुभना समर्थ अपने जमाने

की मानी हुई अभिनेत्री थी। पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया था कि शोभना समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला, संस्कृति के संस्कार धरोहर ही में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म लैला मजनू में। सरदार मलिक साहब का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय बन पड़ा था इस फिल्म में।

नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर उभरने वाली भावभंगिमाएं उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करती थी। यही उनके खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरों का कंपन, उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सूक्ष्म हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।

दोस्तों, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभिषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और इसका सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी सशक्त अदाकारी से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

नूतन अपनी अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को साकार करने में महारत रखती थीं। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुचर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विषय भी बड़ा ही हटके चुना था। स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पेचीदगी को दर्शाने का मार्मिक चित्रण था इस फिल्म में। जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विषय वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन अदाकार देवानंद।

कुछ ऐसी ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने जमाने के ग्रेट शोमैन राज कपूर।

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म छलिया में भी उन्होंने राज कपूर साहब के साथ हीरोइन का रोल निभाया था। फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई।

1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। दोस्तों, देवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने।

इसी दौरान यानी सन 1959 के आसपास नूतन ने नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई।

साल आई थी फिल्म छबीली। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने उन पर फिल्माए गए थे स्वयं ही गाए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माताजी शोभना समर्थ ने।

60 से 70 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म शीशम हो या 1954 की फिल्म शबाब हो, 1956 की बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली का ठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दांव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो, 1965 की फिल्म रिश्ते नाते हो या हो 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र।

जहां तक फिल्म फेयर के चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए जो रिलीज हुई थी 1967 में, प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल।

0: इनमें जो यादगार हैं वो हैं 1986 में आई फिल्म जो कि दिलीप कुमार के साथ थी, फिल्म कर्मा।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी।
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू हर दिन।

1985 में फिल्म मेरी जंग, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। दोस्तों, नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी, और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात रिलीज हुई थी। दोस्तों, उनके बेटे मोहनीश बहल एक सफल अभिनेता हैं। नूतन की छोटी बहन अपने जमाने की जानी मानी मारूफ अदाकारा रही हैं तनुजा। इन्हीं की बेटी है काजोल भी, जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराहते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सेन समर्थ की ये छबीली बेटी अपने बेटे मोहनीश बहल को खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंपकर 54 वर्ष की छोटी सी आयु में 21 फरवरी 1991 में हम लोग की दुनिया छोड़ परलोक सिधार गई।

0: तो ये था आज के फनकार ये कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री नूतन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों, आंखें हैं दिल की जुबान, बिना बोले कह दे हर अरमान, खुशी हो या कोई गम, सब पढ़ लेती हैं ये हर दम।

0: एक बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।
1: सुनिएगा मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहब पर केंद्रित फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम वो भूली दास्तां, शनिवार 6 जून 2026 को सुबह 10 बजे और इसी कार्यक्रम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे रात 10 बजे।

दोस्तों, वफा का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। यह दिल से दिल का एक बोल होता है। मुश्किल राहों में जो साथ निभाए, हर दुख में जो मुस्कुराना सिखाए, वही वफा की सच्ची पहचान है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार है SP बाला सुब्रमण्यम। जी हाँ दोस्तों, SP बाला सुब्रमण्यम भारत के सबसे महान पार्श्व गायकों में से एक थे। उन्हें प्यार से बालू और SPB भी कहा जाता था। इनका जन्म 4 जून 1946 को हुआ था। इनका पूरा नाम श्रीपति मंडीतारा ध्यूला बाला सुब्रमण्यम है। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 40,000 से भी अधिक गीत गाए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं के कुछ चुनिंदा हिंदी फिल्मी गीत।

दोस्तों, एसपी बाला सुब्रमण्यम की मधुर आवाज और बहुमुखी प्रतिभा के कारण उन्हें भारतीय फिल्म संगीत का एक अमर सितारा माना जाता है। आज भी उनके गीत करोड़ों लोगों द्वारा सुने जाते हैं। इन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अनेक राज्य और फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

0: एक बेटे की हैसियत से मुझे पिताजी से क्या सीख मिली, क्या पाया और किस तरह वो हमारी मधुर स्मृतियों में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में। बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी हजारीबाग के संग।
1: सुनिएगा मशहूर गीतकार, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर राजेंद्र किशन साहब पर केंद्रित फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम वो भूली दास्तां, शनिवार 6 जून 2026 को सुबह 10 बजे और इसी कार्यक्रम का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे रात 10 बजे।

दोस्तों, इसी के साथ आज के फनकार कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल